0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
2: Hello, hello, namaste, and a very warm welcome to Radio Masti 24/7. That is right, वो वक्त शुरू हो चुका है जिसे हम कहते हैं मस्ती 90s mixtape का वक्त, nostalgia का वक्त, हमारी favorite show का वक्त। मैं हूँ आपकी 90s वाली आंत्रा, बिल्कुल हाजिर हूँ यहाँ पर on time। मैं कुछ आज actions देती हूँ, ठीक है? Tell me whether आपके हाथ जो है automatically know what to do। नई notebook मिली है, first page immediately यूज करना है? नहीं, पहले पेजेस को थंब से, मतलब अपने अंगूठे से फर पूरे नोटबुक का फैन करना है। मैं ना करते थे, एकदम फील अलग आती थी और साथ में खुशबू, एक विफ ऑफ खुशबू आया करती थी। नहीं, न्यू शूज जब आए सीधा पहन लेंगे, ऑफ कोर्स नॉट, बॉक्स को खोलेंगे, टिश्यू को हटाएंगे, दोनों शूज बाहर निकालेंगे, सोल को देखेंगे, उसको स्मेल करेंगे, फिर घर के अंदर चार चक्कर लगाकर सबसे पूछेंगे कि मम्मी ठीक लग रहा है, पापा ठीक लग रहा है, कैसा लग रहा है ये नया क्रिकेट बैट जब आया था आपका, सीधा मैच खेलने गए थे? प्लीज, पहले तो इमेजिनरी शॉट आपने ठाक करके लगाया होगा, राइट? एकदम एक तेंदुलकर स्टाइल स्ट्रेट ड्राइव इन बेडरूम, बॉल तो है ही नहीं बट शॉट पूरा सिक्सर। दैट्स द 90s वाला बचपन आई वांट टू ओपन टुडे, बिकॉज़ हमारी मेमोरीज सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की नहीं, दे आर अबाउट दीस टाइनी रिचुअल्स अटैच्ड टू देम। अ न्यू पेन हैड टू बी टेस्टेड बाय राइटिंग योर नेम, न्यू कलर पेंसिल्स को इमीडिएटली शॉर्टेस्ट टू टॉलेस्ट अरेंज करना है, न्यू क्लोथ्स आए तो फैमिली के सामने मिनी फैशन शो की अच्छा है, उधर से मतलब आता था हाँ नहीं ऐसा वैसा, और कभी कभी ऐसा होता था कि वो लोग देख भी नहीं रहे होते थे, बट वी आर सो वेरी एक्साइटेड about everything, and same thing happened outside home as well. Sports boys जो है अपने ritual तैयार किया करते थे, bat को knock करना, grip को check करना, ball trousers पे rub करना, as if international match चल रहा है वहाँ पे। Fashion का अपना ritual था, market में sunglasses try किए, mirror में देखा, and then side profile भी check किया, because apparently frontal face wasn't enough information. And cinema, boss 90s Hindi films created rituals without even trying. A film got released Monday तक, स्कूल में डायलॉग सर्कुलेट, सॉन्ग हिट हुआ, नेक्स्ट फैमिली फंक्शन में somebody is already prepared the steps. हीरो का लुक वर्क्ड, बाबर को जो है यानी कि एक्सप्लेनेशन जो है वो देना शुरू करते कि एकदम हीरोइन का आउटफिट जैसे हम टेलर मास्टर को दिया करते थे, एंड या स्लीव्स थोड़ी ऐसी, एंड म्यूजिक के भी रिचुअल्स हुआ करते थे। यू डिड नॉट जस्ट लव अ सॉन्ग, यू वेटेड फॉर इट, यू रिकॉग्नाइज्ड इट फ्रॉम द फर्स्ट टू सेकेंड्स, स्टॉप्ड व्हाटएवर यू वर डूइंग, एंड समटाइम्स शाउटेड फ्रॉम अनदर रूम, अरे मेरा वाला गाना। 90s के वो हसीन कमाल के दिन। मैं 90s वाली आंत्रा अगले 3 घंटे आपको इन्हीं दिनों में हम लोग घूमेंगे, फिरेंगे, ऐश करेंगे, और क्या है ना, लेट्स गो।

0: some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
1: It's a Masti Partner event.
2: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी,
3: क्यों सोचते ही आया ना याद वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
4: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानीज रॉयल मिठाई एंड नमकीन। अर्ली बर्ड प्राइसेस फ्रॉम $72 प्लस ऑनवर्ड्स अंटिल 11th October. फॉर मोर डिटेल्स कॉल 6235-8840 और लॉग ऑन टू shahimaharani.com.
5: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia ka IV drip. Musty 90s mixtape.
6: वेलकम बैक टू मस्ती 90s मिक्सटेप। मैं हूं आपकी 90s वाली यंत्रा यहां पर आपके साथ। भाई 90s के घर के अंदर एक यूनिवर्सल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, याद है आपको? अगर नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला देती हूं। नहीं, ये कोई मेजरिंग स्पून नहीं था, ना ही कोई मेजरिंग कप था, कोई मार्किंग्स नहीं थी, ये था बॉटल का ढक्कन, याद आया? एंड समहाउ हर लिक्विड का अपना ढक्कन का मैथमेटिक्स था, यानी कि जैसे मम्मी बाथरूम में एक ढक्कन डेटॉल डाल देना पानी में, बस कितना पानी, बकेट फुल या हाफ पता नहीं, ढक्कन छोटा है या बड़ा पता नहीं, दीज आर ऑल इररिलेवेंट क्वेश्चंस। एक ढक्कन मतलब एक ढक्कन, और डेटॉल का तो पूरा रिचुअल था, बॉटल खोलो और उसकी एक वो जो अनमिस्टिकेबल सी स्मेल थी, कैप में केयरफुली पोर करो, थोड़ा सा हाथ हिल गया तो एक्स्ट्रा निकल गया, आप क्या करें वापस बॉटल में डाले, नहीं चलो कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा हो गया और वो मिल्की वाइट सा पानी बनते ही वो जो सेटिस्फेक्शन आता था, है ना, अब जर्म्स ऑफिशियली डर जाएंगे, ऐसी वाली फीलिंग आती थी। फिर आता था फिनाइल, दो ढक्कन फिनाइल डाल दो पोछे वाले पानी में, ये था इंस्ट्रक्शन। एंड अगेन इंडियन हाउस होल्ड साइंस हैड स्पोकन, फ्लोर कितना बड़ा है, बकेट कितना है, डजंट मैटर, दो ढक्कन, केस क्लोज्ड। शैम्पू में भी अपनी इंजीनियरिंग थी, बॉटल हाथ में बहुत ज्यादा मत लेना, तो पहले कैप में शैम्पू, फिर कैप से हाथ पर, हथेली पर मतलब, और अगर थोड़ा शैम्पू कैप के अंदर चिपक गया तो उसमें पानी डालो, शेक शेक शेक, एंड वो भी सीधा सर पे। बॉस प्रोडक्ट वेस्ट करना अलाउड नहीं था 90s में, एंड मेडिसिंस वो सिरप की बॉटल के साथ, कभी कभी प्रॉपर मेजरिंग कप मिला तो उसको लग्जरी माना जाता था, वरना मम्मी का मेजरमेंट आधा ढक्कन, मतलब कि मम्मी की आंखों में बिल्ट इन मिलीमीटर का कैलिब्रेशन ऐसा था कि मैं क्या ही बताऊं। और बच्चे के लिए सबसे डेंजरस इंस्ट्रक्शन, बेटा एक ढक्कन डाल देना, बिकॉज नाउ यू हैव बीन हैंडेड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू पोर स्लोली, द लिक्विड राइजेस ऑलमोस्ट टॉप तक, एंड देन यू आस्क मम्मी इतना, एंड दूर से आवाज आती है, हाँ हाँ हाँ बस बस बस बस, टू लेट, क्योंकि वो तब तक ओवरफ्लो हो जाता था। ऐसा हमेशा हमारे घर में ये सीन चल रहा होता था, एंड आई थिंक दैट्स सच अ स्पेसिफिक होम मेमोरी, बिकॉज वो ढक्कन टेक्निकली सिर्फ बॉटल क्लोज करने के लिए ही बना था, बट इंडियन हाउस होल्ड लुक्ड एट इट एंड सेड, भाई कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारा प्रमोशन हो चुका है, अब तुम लिड भी हो, मेजरिंग कप भी हो, समटाइम्स मिक्सिंग बोल भी बना दो इसको, नो नंबर्स, नो प्रिसाइज लाइंस, जस्ट एक ढक्कन, आधा ढक्कन, दो ढक्कन, एंड समहाउ कपड़े साफ हुए, फ्लोर साफ हुआ, हेयर वॉश हो गया, घर चल गया। 90s होम मैनेजमेंट का मेट्रिक सिस्टम अलग ही था, लाइक बाय गॉड की कसम, सेंटीमीटर, लीटर, मिलीलीटर, और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट ढक्कन, है ना। चलो भाई, ढक्कन के नाम अगला गाना ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

दोस्तों से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। चलिए 90s के एक सिनेमा के पास चलते हैं। आपको एक सीन इमेजिन कराऊं। ओ बाय द वे, ये है मस्ती 90s मिक्स टेप। मैं हूं 90s वाली अंतरा यहां पर आपके साथ। भाई फिल्म एक 90s की उठाते हैं जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है। 8 महीने का हेक्टिक वर्क उसमें हो चुका है। रिलीज पास आ रही है, एडिटिंग रूम्स में फाइनल टचेस चल रहे हैं एंड एट दिस पॉइंट मोस्ट ऑफ अस वुड प्रोबेबली से कि भाई अब बस एक्सपोर्ट कर दो, हो गया, बन गई होगी फिल्म। बट डायरेक्टर मणि रत्नम जनवरी 1995 की एक फैसिनेटिंग ऑन ग्राउंड रिपोर्ट देती हूँ, रिटन व्हाइल बॉम्बे वाज एक्चुअली बीइंग फिनिश्ड। जी हाँ, बॉम्बे मूवी की मैं बात कर रही हूँ। वो रिपोर्टर साहब जो है वो ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, मणि रत्नम लिटरली मूविंग बिटवीन एडिटिंग रूम्स इन हिज सॉक्स। एक रील जो है वो प्ले हो रहा है, रेन कैन बी हर्ड, एंड तभी मणि सर इंटरप्ट करते हैं। रेन का साउंड ना बहुत छोटा है, बहुत छोटा, लाइक टू मेटालिक, आई एम नॉट लाइकिंग इट। देन अनदर शॉट कम्स अप एंड नाउ ही इज क्वेश्चनिंग, इज देयर टू मच रेड इन दैट शॉट। आई मीन वाओ, फिल्म में कम्युनल वायलेंस, लव स्टोरी, ह्यूज इमोशनल सीक्वेंसेस, ए आर रहमान साहब का म्यूजिक, और रिलीज के बिल्कुल करीब डायरेक्टर का ब्रेन जो है अभी भी यही कह रहा है कि यार ये बारिश सही नहीं सुनाई दे रहा है, फील नहीं आ रही है। That's filmmaking obsession at another level altogether. And once you know this, Bombay ko aap dobara se dekh sakte ho us movie ko. Because suddenly you realize how much of what you are feeling has been designed through tiny things you may never consciously notice. Color, sound, rain, silence, background score, the mood of a frame. And Mani Ratnam Sahab was not just relying on imagination for the darker portions either. That same contemporary jo hai ye report kehti hai that he spent weeks researching ye Bombay ke riots through newspapers, magazines and video footages. He visited riot affected areas, photographed kiye location, school, spoke to people who had lived through it, even interviewed journalists who had covered the violence. So when we remember Bombay, of course we remember Manisha Koirala, Arvind Swamy. Oh my god, I loved Arvind Swamy. एक टाइम पे क्रश हुआ करता था मेरा, बहुत ही सुपर डुपर। देन द सॉन्ग्स, तू ही रे, कहना ही क्या, एंड देन हम्मा हम्मा का वो बीट। बट देन another one like A.R. Rahman jo sahab hai, unhone kaha that his music was not simply an album of good songs sitting separately from the movie at that time. The intention was for the music to mesh with the film itself, and suddenly that explains a lot, doesn't it? Kyunki Bombay ka music sirf songs mein nahi rehta, the background score also becomes another character. And next time somebody says ki are yaar audience ko kya pata chalega ki barish ka sound slightly metallic hai, maybe that's exactly the point. Audience ko consciously pata nahi chalega, but perhaps they'll feel that something is not right. And somebody like Mani Ratnam sir is sitting in an editing room in socks days before release, obsessing over precisely that. And that's कमाल का जो है बिहाइंड द सीन, जो मुझे देने में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी आपको, इतनी सारी बातें और हम्मा हम्मा ना हो, या कहना ही क्या प्ले करूं, या तू ही रे, एक्चुअली लेट्स सी ये वाला। ओके okay.

कसर से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। वेलकम बैक टू मस्ती 90s मिक्स टेप। आप हो 90s वाली अंतरा के साथ ऑन रेडियो मस्ती 24/7। 90s के घर में एंटरटेनमेंट के लिए टीवी ऑन करना जरूरी बिल्कुल भी नहीं था। समटाइम्स यू जस्ट नीडेड एक खिड़की और उसमें लगी हुई आयरन की वो ग्रिल, बिकॉज दैट वॉज नॉट मेयरली एक खिड़की, दैट वॉज हमारा लाइव नेबरहुड का चैनल। नीचे वाले ग्रिल बार पर पैर रख कर ऊपर वाले पे हाथ, चेहरा दो बार्स के बीच में ऐसे टिका के चिन परफेक्टली एडजस्ट करके ब्रॉडकास्ट शुरू किया जाता था मेरे दोस्त, कि भाई मम्मी सब्जी वाला आ गया है, पापा शर्मा अंकल देखो कहां जा रहे हैं स्कूटर में बैठ के, एंड कोई गाड़ी अगर रिवर्स कर रही है उसकी एक पर्टिकुलर गाड़ी की साउंड हुआ करती थी। इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस जीरो, रिपोर्टिंग का एंथुसियाज्म ब्रेकिंग न्यूज लेवल। और अगर गली से जो है धुमता ना ऐसा कुछ ऐसी जो नो बरातों वाली आवाज आ गई, ओ माय गॉड, विद इन 5 seconds पूरा का पूरा घर उस विंडो की ग्रिल पे टिका हुआ दिखता था कि अरे किसकी किसकी बारात जा रही है, किसकी शादी है, नोबडी नोज, डजंट मैटर। अब हम इन्वेस्टेड हो चुके हैं इसमें, ब्राइड हमारी रिलेटिव नहीं है, ग्रूम को कभी हमने देखा नहीं है, बट बैंड कौन सा गाना बजा रहा है, कौन अंकल सबसे ज्यादा नाच रहे हैं, घोड़ी कहां जाके रुक गई, फुल कवरेज हमें लेना है। देन देयर वाज रेन, यानी कि बारिश वाली रेन। यप, फर्स्ट फ्यू ड्रॉप्स, मिट्टी की वो स्मेल, रोड का वो कलर डार्क होना, और हम ग्रिल पकड़कर बस बाहर देखते हुए हाथ बार्स के बीच से निकल कर रेन को यू कैच करना, फिर वो गीले गीले हमारी उंगलियां अंदर लाके देखो देखो बारिश बारिश हो रही है। एज अ फैमिली नीडेड फिजिकल एविडेंस, एंड द विंडो बिकेम इवन मोर एक्साइटिंग व्हेन बाहर से कोई आवाज सडनली गॉट लाउडर। मतलब कि अगर मोहल्ले में दो लोगों के बीच में तूतू मैं हो गई, ओ माई गॉड, कर्टन को थोड़ा सा साइड में, ग्रिल पोजिशन ऑक्यूपाइड, एवरीबडी प्रिटेंडिंग कि हम तो बस हवा खा रहे, सुन कौन रहा है। हाँ हाँ, हवा में पूरा प्लॉट सुनाई देता था, एंड द वेंडर्स हैड देयर ओन साउंडट्रैक, दूर से आवाज आती थी, वर्ड्स समझ नहीं आए बट मम्मी समहाउ इंस्टेंटली डिकोड कर लेती थी कि भाई सब्जी वाला आ रहा है, आई डोंट नो हाउ, टू मी इट साउंडेड लाइक ऐसा करके और वॉर्म्स जो है वो सुनती थी कि अरे आलू ले लो, धनिया ले लो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, राइट। नाउ अब द बेस्ट पार्ट, योर फ्रेंड जो है अपीयर्स डाउनस्टेयर्स, कोई फोन नहीं है उस टाइम पे, कोई मैसेज नहीं कर सकता, बस दे सिंपली लुक अप एंड शाउट आपका नाम अंतरा, एंड यू अपीयर अपने खिड़की पर लाइक रॉयल फैमिली ऑन द पैलेस बालकनी, कि क्या है, नीचे आओ, रुको, पूछना पड़ेगा। एंटायर कॉन्वर्सेशन कंडक्टेड थ्रू दोज खिड़की खिड़की एंड फ्लोर्स टू फ्लोर्स। प्राइवेसी वॉज नॉट पार्ट ऑफ द टेलीकॉम पैकेज दो, एंड मे बी दैट्स वाई दोज windows felt so alive. We were not looking at curated feeds, we were looking at whatever happened to be happening. कोई साइकिल पास कर रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, someone washing अपना स्कूटर, a dog sleeping in the sun, कोई एक पतंग कहीं अटकी हुई है, एक बारात, we were not invited to, nothing extraordinary, but we would stand there for ages. आज तो विंडो के पास जाते हैं तो maybe व्यू देखते हैं, तब पूरी कहानी देखते थे, बिकॉज 90s का नेबरहुड चैनल 24/7 लाइव था, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, बफरिंग नहीं, नो रिमोट, बस एक प्रॉब्लम, ज्यादा देर ग्रिल पे लटके रहे तो पीछे से डांट पड़ने की आवाज आ जाती थी कि वहां से उतरो, बहुत हो गया, जाके पढ़ाई करो अपनी। आई टेल यू सीरियसली,

0: Mental health is not a destination, but a process. It's about how you drive and not where you are going. Radio Masti 24/7 supports World Mental Health Day.
1: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, Masti 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Masti 24/7 Live.

0: कौन कौन कौन है ये कौन?
1: अभी समझ में आ जाएगा कौन है ये। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अनुराग के साथ यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई देखिए, एक्टर्स जो है किसी भी फिल्म के लिए 90s में भी दे यूज टू प्रिपेयर फॉर वीक्स एंड समटाइम्स मंथ्स एज वेल, कि कैरेक्टर की वॉक कैसी है, आवाज कैसी है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, रिएक्शंस कैसे है, सब सेट। नाउ इमेजिन शूट के सिर्फ 15 मिनट पहले एक्टर डायरेक्टर के पास जाकर बोले कि नहीं यार ये कैरेक्टर ना ऐसे काम नहीं करेगा। And that's pretty much what happened with Manoj Bajpai on the set of the movie Kaun? Question mark. अरे कौन सी मूवी कौन? अरे 1999 में राम गोपाल वर्मा की कौन, अनुराग कश्यप की राइटिंग, उर्मिला मातोंडकर इनसाइड दैट लोनली हाउस, ओके बाहर तूफान घंटी बजती है तभी, एंड एंटर्स दिस एक्सट्रीमली स्ट्रेंज इरिटेटिंग फनी अनसेटलिंग मैन समीर ए पुरनावाले। Now here's the fascinating part. So Manoj Bajpai jo hai has said that the character he had originally prepared was the way Ram Gopal Verma wanted him to play it. Much more serious it was. But Bajpai sahab hamare convinced nahi the. He kept thinking, if I enter this already dark film as another serious mysterious man, film flat ho sakti hai. So on the day of the shoot, with roughly 15 minutes before he had to perform, he went to Ram Gopal Verma, Manoj Bajpai and Anurag Kashyap and said, let me show you something different first. And then Manoj Bajpai performed apna version of the character. More talkative, more irritating, more unpredictable. That slightly berserk wali energy we eventually saw on the screen, right? Now, according to Manoj Bajpai, sir, Ram Gopal Verma and Anurag immediately approved it. Now, think about that one decision does to this movie Kaun, because Manoj sir ka jo character hai jab enter karta hai and for a while you don't know what box to put him in. Is he funny? Is he dangerous? Stupid hai? Clever hai? Jhoot bol raha hai? Sach bol raha hai? Kya hai ye banda? And then of course Manoj Bajpai explained the logic beautifully. If his character remained completely serious, an audience ka attention jo hai would stay only with Urmila. Uski craziness made us keep watching him too. Ah bhai, ye banda na अलग ही लेवल पे है, अलग ही लेवल। सीरियसली 15 मिनट पहले कौन करता है ये सारी चीजें? बट देन ऐसे ही लोग जो है हिस्ट्रियां लिखते हैं और ऐसे ही लोग लेजेंड भी बनते हैं। कौन कौन? मनोज बाजपेयी द लेजेंड। वाह वाह वाह वाह, मैं भी लेजेंड, ये हमारा मस्ती मीडिया 24/7 भी लेजेंड, और लेजेंडरी गाना कम नेक्स्ट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप। वेलकम बैक, स्वागत है आपका वापस से 90s की इस खूबसूरत सी दुनिया पे जिसको कहते हैं हम मस्ती 90s मिक्स टेप और रेडियो मस्ती 24/7। मैं 90s वाली अंशा आपके साथ। सो 90s के चाइल्डहुड में सेल्फ कंट्रोल टेस्ट करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका था, एटलीस्ट मेरे पास तो ये था। आई एम श्योर आपको भी बहुत ही ज्यादा ये रिलेटेबल लगेगी। याद, आपको एक बेडशीट या अगर पिलो कवर दू तो उसमें से एक छोटा सा लूज थ्रेड अगर बाहर निकाल दू बस गेम ओवर, बिकॉज टेक्निकली आपको उससे करना कुछ नहीं है एंड यू नो दैट। स्पेसिफिकली आपको इंस्ट्रक्शन मिले हुए घर के बड़ों से कि धागा खींचना मत, बट वो धागा वहां पे पड़ा है, अकेला है, अवेलेबल है, ऑलमोस्ट कॉलिंग यू कि अंतरा बस थोड़ा और खींच के देख कि होता क्या है, एंड ऑब्वियसली यू एंड अप पुलिंग इट। बस 1 सेंटीमीटर, नथिंग हैपेंस। इंटरेस्टिंग, थोड़ा और खींचो तो अब धागा 5 सेंटीमीटर, एंड दिस इज वेयर अ सेंसिबल पर्सन वुड स्टॉप। बट 90s के जो चाइल्डहुड में हमारे एक्सपेरिमेंट के लेवल ही अलग थे। लेट्स सी ये लंबा कितना है। सो यू कीप पुलिंग एंड सडनली यू आर watching the stitching disappear in real time. अरे वाह, बड़ा ही सेटिस्फाइंग था ये। 10 सेंटीमीटर, 20, 30, अब आपके हाथ में इतना धागा है कि टेक्निकली फ्रेंडशिप ब्रेसलेट उसका बन सकता है, एंड देन यू लुक एट द पिलो कवर। ओ साइड की जो सीम है ना, थोड़ी सस्पिशियसली ओपन सी हो गई है। नाउ यू आर इन पैनिक मोड, धागा वापस अंदर पुश करने की कोशिश, एज इन स्टिचिंग रिवर्स में इंस्टॉल हो जाएगी कि यार अंदर चले जाना है, प्लीज अंदर चले जाना ना। सो प्लान बी, एविडेंस को डिस्पोज करना है, थ्रेड को तोड़ने की कोशिश। बट ऑब्वियसली जब खींचना था तब इजीली निकल रहा था, अब तोड़ना है तो वो अब स्टील केबल बन चुका है, दांत इन्वॉल्व हो गए हैं, ट्विस्ट इन्वॉल्व हो गया है, नाखून इन्वॉल्व हो गए हैं। फाइनली समहाउ ब्रेक किया, लिटिल पीस मैट्रेस के नीचे छुपाया, पिलो को स्ट्रेटेजिकली रोटेट किया, डैमेज वाली साइड की वॉल की तरफ डाल दिया, क्राइम सक्सेसफुली कवर्ड अप। अंटिल मम्मी या हमारी जो इन्वेस्टिगेटर द ग्रेट हर घर में, नेक्स्ट मॉर्निंग पिलो कवर चेंज करते हुए कि ये सिलाई कैसे खुल गई है, एंड इमीडिएटली लीगल डिफेंस आता था हमारा सीधा, मुझे नहीं पता, रियली वी डिडंट नो। मीनवाइल 40 सेंटीमीटर्स का थ्रेड आपके स्कूल शॉर्ट्स के पॉकेट से एविडेंस दे रहा है, एंड इट वॉज नॉट ओनली पिलो कवर्स, बेडशीट का कॉर्नर, टॉवल का एज, स्वेटर का वो जो वूल है, कर्टन की स्टिचिंग, and if sometimes something was sticking out, our fingers had a professional kind of obligation to investigate. Sometimes thread pull karte karte fabric bunch up ho jata tha, to hum opposite direction ko smooth karne lag jate the ki yaar tu theek ho ja, tu theek ho ja. Bahut sab textile surgery chal rahi hai, and the most dangerous loose thread, the one that came out smoothly, because resistance mil jaye to bachcha ruk sakta hai, but if it goes like the satisfactory wala yeah, it's not thread anymore. It's 90s ki kid ka entertainment ban chuka hai wo. आई याद आई, आई ना, आई नो मैन। रेडियो मस्ती 24/7 पर यही है हमारा काम। लेट्स गो टेक अ 90s वाला म्यूजिकल ब्रेक।

0: Bringi, celebration bhi aur exciting prizes jeetne ka mauka bhi. Zaxxalon India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition stanya, cultural entertainment and family fun. 16th se 25th October tak, Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxalon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxalonindia.com.
1: Garam kadahi, bhanta hua besan, wo halki aanch par ghulti hui chashni.
2: Kyun? सोचते ही आया ना याद वो दिवाली वाला शाही स्वाद.
0: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ. रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर. नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस. Shahi Maharani's Royal Mithai and a Namkeen. Early bird prices from $72 plus onwards until 11th October. For more details, call 6235-8840 or log on to shahimaharani.com.

कसर से कसर की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। Another beautiful one. I mean, एक के बाद एक ऐसी ही लाइन से यादें ताजा हो जाती है मेरी जब जब मैं करती हूँ मस्ती 90s मिक्स टेप। मैं हूँ 90s वाली अंतराव के साथ ऑन रेडियो मस्ती 24/7। सो 90s में अगर घर में बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स का नया टिन आया है, ओके, तो टेक्निकली वो ब्रेकफास्ट आइटम नहीं था, वो था इंजीनियरिंग का प्रैक्टिकल। बिकॉज न्यू टिन खोलना मतलब पहले आउटर वाला लिड निकालो, और फिर सामने आता था असली चैलेंज, अंदर का मेटल सील। अब उसको देखकर घर में किसी ने कभी ये नहीं कहा कि इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं कि कैसे करना है। प्लीज सीधा चम्मच लाओ। एक स्टर्डी सा स्टील स्पून आया, उसका जो एज मेटल लिड का साइड में उसको फिट किया हमने, थोड़ा सा प्रेशर डाला एंड खटाक एक कॉर्नर उठा। विक्ट्री अभी पूरी नहीं आई है दोस्त, अभी हमारे हाथों पे अभी तो ऑपरेशन शुरू हुआ है। स्पून को थोड़ा और आगे शिफ्ट करो, फिर खटाक एंड और थोड़ा, फिर खटाक and slowly that lid starts lifting. Of course, बच्चे साइड में जो है हमेशा हम लोगों को मौका चाहिए होता था कि ये कूल चीज तो हमें करनी ही करनी है, बट हमें दिया नहीं जाता था फॉर द रीजन क्योंकि कहा गया था कि हाथ कट जाएगा। सो 90s चाइल्डहुड में कुछ जॉब्स क्लियरली अडल्ट क्लियरेंस मांगती थी, एंड न्यू बॉर्नविटा टिन ओपनिंग वॉज डेफिनेटली वन ऑफ देम। बट द बेस्ट मोमेंट वॉज जब फाइनली वो सील उठती, पप करके एक आवाज आती एंड सडनली दैट स्मेल फ्रेश बॉर्नविटा या फ्रेश हॉर्लिक्स की, वो कॉन्सेंट्रेटेड एंड मॉल्टी एंड द चॉकलेटी पाउडर वाली स्मेल जो एकदम फेस पे आती थी, नेचुरली फर्स्ट इंस्टिंक्ट ऐसे करके पूरा नोज ऑलमोस्ट टिन के अंदर एंड पाउडर बिल्कुल अनटच्ड, परफेक्टली फ्लैट, ब्रांड न्यू, इट लुक्ड सो सैटिस्फाइंग कि स्पून डालने का भी मन नहीं करता था उसमें। बट समबडी हैड टू ब्रेक द सरफेस, राइट? सो द फर्स्ट स्पून गोज इन and now it's officially open for business. फिर उसके बाद measurement system आता था कि दो spoon आप एक spoon डालते, proper mountain बना के उसको निकालते, इतना इतना भर के नहीं, अरे spoon बोला था, you never specified topography of it. Then came the real temptation, powder को directly खाना, correct, you got me right, बस थोड़ा सा dry bonvita spoon पर, फिर वो मुंह में and immediately वो फाकने वाली जो feeling आती है, अच्छा ये powder ना हमारे मुंह के पैलेट पे ऊपर की तरफ चिपक जाता था, याद है आपको? Now, उसको अपने टंग से स्क्रेप करना, but still going back for another pinch because apparently first experience से हमने कुछ सीखा ही नहीं था। And Horlicks Bonvita का टिन खत्म होने के बाद, please don't assume उसका करियर खत्म हो गया। इंडियन हाउसहोल्ड HR डिपार्टमेंट इमीडिएटली उसको रीअसाइन कर देता था, अगले महीने ओपन द सेम टिन Bonvita, नहीं, या तो उसमें दाल या राजमा या चने या बटन या स्क्रू या रैंडम किचन आइटम्स जिसकी आइडेंटिटी सिर्फ मम्मी को पता थी वो मिल जाएंगे। सो यू कुड नेवर ट्रस्ट द लेबल, टिन सेज हॉर्लिक्स बट यू ओपन एक्सपेक्टिंग चाइल्डहुड न्यूट्रिशन इन फॉर्म ऑफ मे बी तूर की दाल, है ना? प्लॉट ट्विस्ट। But the brand new tin moment and the steel का spoon and the metal का seal का वो खटाक खटाक, all of this such a tiny thing yet somehow I can still hear it while talking to you, है ना? टूल किट की जैसे फीलिंग आ गई, फुल ऑन रेडियो बस्ती 24/7 पर। ओ फो ये यादें, आई लव देम।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा, डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा
2: हेरमते आवे माने।
1: इट्स टाइम फॉर सिंगापुर गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि। 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
3: प्रेम, निशा,
4: राहुल,
3: अंजलि,
5: टीना,
3: इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
6: वेलकम बैक टू ऑफ कोर्स मस्ती 90s मिक्सटेप में अंतरा आपके साथ। यहाँ पर 90s के सिनेमा की तरफ थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जाते रहना चाहिए उस गलियारे में भी। वेल, कभी कभी 90s में डायरेक्टर स्क्रीन प्ले नहीं लिख रहा होता था, अपना बचपन रिक्रिएट कर रहा होता था। वेल, इस बार कहानी इन क्वेश्चन इज खामोशी द म्यूजिकल। जी हाँ, इस मूवी में एक ऐसा मोमेंट है जो संजय लीला भंसाली सर के अपने ही खुद की जिंदगी से अपेरेंटली सीधा उन्होंने स्क्रीन पर उतार दिया। 1996 भंसाली साहब का हमारा डायरेक्टोरियल डेब्यू, नाना पाटेकर, सीमा बिस्वास एज जोसेफ एंड फ्लावी, एक डेफ एंड म्यूट कपल। ओके, मनीषा कोयराला उनकी बेटी एनी, सलमान खान एज राज, एंड यस टाइटल खामोशी। बट फिल्म वॉज फिल्ड विथ म्यूजिक, बाहों के दरमिया एंड माई फेवरेट आज मैं ऊपर एंड देर आर मोर, जाना सुनो हम तुम पे मरते हैं। बट टुडे एक ग्लैमरस सॉन्ग या ग्रैंड सेट नहीं, एक कंपैरेटिवली सिंपल सीन। फिल्म में जो है फ्लावी अपने बच्चों के साथ डोर टू डोर जाके चीजें बेचती है। ऑन स्क्रीन इट टेल्स यू समथिंग अबाउट दिस फैमिली का स्ट्रगल, बट बिहाइंड द सीन रिपोर्टेडली सिट्स अ मच मोर पर्सनल मेमोरी। भंसाली सर जो है, ही वॉज टॉकिंग इन दिस इंटरव्यू अबाउट ग्रोइंग अप विद फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड अकाउंट्स ऑफ खामोशी जो है कनेक्ट दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस टू हिज ओन चाइल्डहुड, जब वो खुद अपनी मम्मी और अपनी बहन ये तीनों वुड सिमिलरली गो अराउंड सेलिंग थिंग्स। सो इयर्स लेटर फर्स्ट फिल्म डायरेक्ट करते वक्त ही पुट्स अ वर्जन ऑफ दैट मेमोरी इनसाइड दिस मूवी एंड सडनली वो सीन थोड़ा डिफरेंट लगता है, डजंट इट? बिकॉज यू आर नॉट मियरली वॉचिंग अ डायरेक्टर से ओके फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, लेट्स राइट अ सीन टू एस्टैब्लिश दैट। यू आर पोटेंशियली वॉचिंग हिम से आई नो वॉट दिस लुक्स लाइक, आई हैव लिव्ड समथिंग लाइक दिस। एंड खामोशी बींग हिज डेब्यू मेक्स इट इवन मोर इंटरेस्टिंग, बिकॉज थिंक ऑफ संजय लीला भंसाली वी associate with cinema today. Enormous sets, perfectionist, perfect symmetry, rich colors, costumes, choreography, spectacle, right? But his first film was deeply tied to a much more intimate and emotional world. Family and silence and music, communication, parents and children. And there are traces of his own home and childhood inside it. That, for me, is the fascinating part of 90s ka cinema. Sometimes we keep looking behind the film for who was the first choice, who rejected the role, kaun sa song baad mein add kiya gaya. But sometimes the bitter secret is not in the casting room. It's in director ki memory. The childhood experienced it somewhere quietly for years, and then the child grows up and becomes a filmmaker, writes a scene, puts actor in front of camera, and something that once belonged to a family's private struggle becomes a part of a film watched and loved till date. 90s ka magic, my love, 90s ka magic. Aaj main upar yahi gana ab hum sunenge, play karenge, enjoy karenge saath saath on Radio Masti 24/7.

0: The strongest people are those who win battles we know nothing about. Radio Masti 24/7 supports World Mental Health Day.
1: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें। समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, Masti 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards only on Radio Masti 24/7 Live.
0: Oh my God, I don't think so, अब ऐसा कोई करता होगा, but well, एक और 90s वाली याद ताज़ा करते हैं और मस्ती 90s mixtape on Radio Masti 24/7, मैं 90s वाली अंतरा आपके साथ, और 90s में अगर कोई बहुत pretty सा flower या interesting सा पत्ता मिल गया ना, हम उसकी फोटो नहीं लेते थे, जो कि आज की डेट में हर चीज की फोटो लेकर हम लोग डाल देते हैं, राइट? हम उसको किताब में डाल देते थे, बिकॉज अपेरेंटली चाइल्डहुड का लॉजिक था इसको प्रिजर्व करना है। कैसे? डिक्शनरी लाओ, प्रेफरेबली घर की सबसे मोटी वाली। गार्डन से एक छोटा सा अगर फ्लावर नीचे गिर गया है तो उसको उठाओ, या स्कूल से घर आते हुए कोई परफेक्ट सी लीफ मिल गई हो, पहले उसको केयरफुली इंस्पेक्ट करते थे कि ये वाला अच्छा है, इसका शेप मत खराब करना। एंड देन द बुक ओपन, बीच के पेजेस चूज करो, फ्लावर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, पेटल्स जेंटली स्प्रेड करने हैं, बुक को क्लोज कर देना है, एंड देन वेट डालना है उस पे। उस डिक्शनरी के ऊपर दो और किताबें डालो, मे बी द एटलस, मे बी कोई डैड की जॉइंट रेफरेंस बुक। बेसिकली फ्लावर प्रिजर्व नहीं कर रहे, उसका जिम वर्कआउट वहां पे चल रहा है। एंड देन केम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कि अब कुछ दिन इसको खोलना नहीं है, विच ऑब्वियसली मेंट नेक्स्ट मॉर्निंग थोड़ा सा तो जाके एक बार चेक करना बनता है। बुक को धीरे से ओपन किया, अभी हुआ नहीं, ऑफकोर्स स्टिल फ्लावर। Close again. 2 days later, अब. Patience हमारे strong points कभी भी नहीं थे. But sometimes you actually forgot about it. Weeks passed, months passed, and one random afternoon you open that book looking for something completely different, and oh my God, वो flower, except अब वो bright pink या yellow नहीं है, flat, delicate, थोड़ा सा brown, almost paper जैसा. And suddenly you remember, अरे हाँ, ये तो उसने मिला था ना. That's the magical bit. The flower became a tiny time ka stamp. Some came from school, some from a holiday, some from someone's garden. Somebody gave you one maybe, and maybe that one got extra special treatment. Different page, very carefully placed, nobody allowed to touch. And if you were slightly filmy, bilkul mere jaise, perhaps there was even thoda sa handwritten date next to it. हाँ बिल्कुल, लीव्स जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होती थी, स्पेशली दोस परफेक्ट वंस जहां पे उसकी ना वेन्स दिखाई देती थी। प्रेस देम प्रॉपरली आफ्टर अ वाइल एंड इट लुक लाइक समथिंग फ्रॉम अ बायोलॉजिकल प्रैक्टिकल। एंड एक और बहुत ही खूबसूरत सी बात थी, इमोशन देखिए ना कैसे अटैच हुआ करते थे इसमें। आई टेल यू हाउ, बिकॉज अगर वो फ्लावर आपके क्रश ने दिया है, ठीक है, and now this is the only way you can preserve that thing with you. And how would you do that? You will keep it in the book, and then बहुत time के बाद जब भी वो किताब खोलो और वो rose, सूखा हुआ rose आपको दिखे, नजर आए वहां पे, उसको हाथ में उठाया and उसको ऐसे turn करते हुए वो moment याद किया कि oh my god, what special feeling I felt at that point of time जब उसने मुझे ये flower दिया था। Maybe we are reliving that moment with that सूखा हुआ रोज जो कि बुक में रख दिया था। हाय, मैं हूं फिल्मी, क्या करूं कुछ। बट इट इज सच अ ब्यूटिफुल इमोशन, 90s का इमोशन।

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, चीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
2: इस रस्सी से तो सभी का सामना हुआ ही होगा, एटलीस्ट मैं ऐसा मानना चाहूंगी। रेडियो बस्ती 24/7 पर अंतर आपके साथ मस्ती 90s मिक्सटेप आप सुन रहे हो। 90s के घरों में जैसे कि मैं ऑफ कोर्स घुसी जाती हूँ, लॉन्ड्री सिर्फ वॉशिंग का काम नहीं था, इट इन्वॉल्व सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि कपड़े तो धुल गए हैं, अब असली सवाल रस्सी जिस पे सूखेगी इतना वेट जो है वो ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी। नाउ बालकनी हो, टेरेस हो, कोर्टयार्ड हो, एक एंड से दूसरे एंड तक क्लोथ लाइन जो है वो टाई की जाती थी। नॉर्मल क्लोथ्स तक तो सब कुछ ठीक था, शर्ट, फ्रॉक, टॉवल, कुर्ता, एंड देन आती थी वो गीली गीली भारी भारी बेडशीटें। बस गेम ओवर वहीं पे, बेडशीट रस्सी पर गई नहीं, और स्लोली पूरी जो वो जो रस्सी हुआ करती थी ना, सेंटर से नीचे झुक जाती थी। एक बेडशीट ने सबका मोराल ऐसा मतलब नीचे लेकर जाता था, अब इमीडिएट रिएक्शन की अरे नीचे लग जाएगी, बिकॉज वेट क्लोथ्स टचिंग द फ्लोर इज अनएक्सेप्टेबल, क्योंकि अभी अभी धुल के आए हैं। एंड दिस इज वेयर घर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ड्री इक्विपमेंट एंटर्ड, लंबा सा वो बैम्बू वाला पोल। वो बैम्बू पोल कहाँ रहता था, नोबडी रियली नोज, बट व्हेनेवर रस्सी ऐसी सैग सी करने लगती थी ना, समबडी मैजिकली प्रोड्यूस्ड इट, पोल को सेंटर के नीचे लगाओ ठक करके एंड पुश इट अपवर्ड्स, एंड सडनली दिस क्लोथ लाइन वाज बैक एट रिस्पेक्टेबल ऑल्टीट्यूड। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व, बट मम्मी वॉज नॉट डन, बिकॉज लॉन्ड्री हैंगिंग इटसेल्फ हैड अ सिस्टम, हैवी टॉवल एक साइड, नहीं उधर ऑलरेडी बेडशीट है तो शिफ्ट करो टॉवल को, जीन्स इधर जाएगी, शर्ट उधर जाएगी, छोटे कपड़े बीच में आएंगे। बॉस शी वॉज नॉट ड्राइंग क्लोथ, शी वॉज कैलकुलेटिंग लोड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड वो गीली जीन्स, ओहो दोस थिंग्स वेड अप्रोक्सीमेटली सेम एज अ स्मॉल किड, हैंग वन पेयर, एंड रस्सी कहती थी कि मैं तो रिजाइन कर रही हूँ, तुम लोगों को जो करना है कर लो। देन केम द क्लिप्स, प्लास्टिक की वो क्लिप्स इन रैंडम कलर्स, कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ एब्सोल्युटली यूजलेस, सम जिसके स्प्रिंग हैड डिसअपीयर्ड बट फैमिली स्टिल हैडंट थ्रोन देम अवे, बिकॉज ऑफ कोर्स काम तो आ ही जाएगी कैसे, नोबडी नोज। एंड बेडशीट इटसेल्फ रिक्वायर्ड अ टेक्निक, हवा ज्यादा है तो एक्स्ट्रा क्लिप्स लगेंगी, बिकॉज वन स्ट्रॉन्ग गस्ट एंड सडनली बेडशीट फट Entire balcony becomes that sailing boat के जैसे फील आती थी, एंड क्लिप और लगाओ ऐसे करके हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे, और मतलब बच्चे तो होते थे इमरजेंसी ग्राउंड स्टाफ। एंड देन देयर वाज दिस बिगेस्ट थ्रेट, बारिश, पहली बूंद, somebody notices, and suddenly the entire family logistics operation, कपड़े, हर कोई भागते हुए जाता था, बेडशीट पुल कर रहा है, towels grab किए जा रहे हैं, clips उड़ रहे हैं इधर उधर, half dried shirt जो है shoulder पे है, and of course the moment you have rescued everything, the rain stops, the sun is coming out, and yeah, we used to look at the sky personally offended होकर कि यार ये क्या मतलब था। Back goes the bamboo, back goes the rassi, back goes the bedsheet. Whole installation restarted. But there's one sensory memory I still love. Kapde finally dry, bringing them inside in this one giant pile. Ek wo, kaise samjhau? Ek wo warm and ek sun-dried si smell hoti hai na? Koi fancy fragrance ka description usme required nahi hota. It smelled like dhoop and it smelled like ghar. हम घर के आना गए ऐसे हैं, आई नो इट्स जस्ट इट्स स्मेल्स लाइक होम, या

0: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी।
1: क्यों, सोचते ही आया ना याद वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
2: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानी's रॉयल मिठाई एंड नमकीन। Early bird prices from $72 plus onwards until 11th October. For more details, call 6235-8840 or log on to shahimaharani.com.
3: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
4: It's a must-be partner event.

0: पेंसिल से कसत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: This movie has one of my very very liked song and वो मैं गाना बस इस बात को करने के बाद मैं चलाने वाली हूँ, बट मूवी का नाम बता देती हूँ जिसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। भाई ये है मस्ती 90s मिक्स टेप, मैं अंतरा आपके साथ एंड मूवी है हमारी विरासत। इमेजिन करिए आप एक न्यू कमर है, आपको बोला गया है डायरेक्टर से जाके मिलो, अगर उन्हें तुम पसंद आई तो वो स्क्रीन टेस्ट मांगे तो स्क्रीन टेस्ट होगा। नेचुरली आप मेंटली रेडी होते हो कि डायलॉग, एक्सप्रेशन, कैमरा, प्रोफाइल, ब्रिंग इट ऑन। पूजा बत्रा इन द मूवी विरासत। नाउ रिपोर्ट्स की मानी जाए एग्जैक्टली इसी एक्सपेक्टेशन के साथ प्रियदर्शन जी से मिलने गई थी इसके विरासत के सेट पर, बट प्रियदर्शन जी हैड अ रादर डिफरेंट ऑडिशन टेक्निक, उन्होंने ऑडिशन लिया ही नहीं। सो पूजा बत्रा वॉज सेइंग, एक बहुत ही पुराना इंटरव्यू मैगजीन में उन्होंने कहा था दैट दे सिंपली सैट अक्रॉस अ टेबल एंड टॉक्ड, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रही थी एंड शी नोटिसेस प्रियदर्शन जी वॉज कॉन्स्टेंटली वॉचिंग हर, उसका फेस, उसके रिएक्शंस, उसके एक्सप्रेशंस व्हाइल शी वॉज स्पीकिंग एंड देन कॉन्वर्सेशन एंड्स एंड एसेंशियली ही सेज आई थिंक वील गो विथ हर, दैट्स इट, दैट्स इट। पूजा हरसेल्फ later figured that Priyadarshan had probably been gauging her through the conversation itself and I really find that fascinating because imagine coming home ki audition kaisa gaya pata nahi, audition hua hi nahi, humne sirf baat ki, but perhaps this was the audition, no camera, action, ab roke dikhao, profile dikhao. Priyadarshan ji was apparently watching what happens when Pooja is not consciously performing and what a film for that entry into हिंदी सिनेमा आई टेल यू। 1997 की विरासत, अनिल कपूर, तब्बू, अमरीश पुरी जी, पूजा बत्रा एज अनीता, प्रियदर्शन जी की डायरेक्टिंग एंड यस पायले चुनमुन चुनमुन, बट ऑफकोर्स पूजा की मेमोरीज फ्रॉम दैट फिल्म गेव अस अनदर दिस लिटिल peek inside the movie as well. Now, as a newcomer, she said that she learned enormously simply by observing Anil Kapoor and Tabu. Aur wo kehti hain ki Anil being incredibly meticulous not only about his own look and clothes, but even noticing unke co-star jo hai was wearing what. So colors jo hai won't overpower each other unke jo frames mein. And Tabu, she said sitting with her before scenes discussing how lines could be delivered so they would not waste time during the shooting. And her takeaway was very simple. Observing is one of the best ways to learn acting. And that is so very true. Aksar mujhse log poochte hai ki kaise baat kar leti ho itna? And I always say I am a very good listener. Main jab kahin par bhi jaati hoon, main bahut achha sun leti hoon. And mujhe pasand hai sunna. And that is where all of my talking comes from. Because if you are a good listener, you, yeah, kind of have a lot of content all the time. And you can talk at any point of time. Radio Masti 24/7 par. Filhal badhte hain aage yahan par. Bas thodi der aur yahan pe aapka mera saath aur Masti 90s mixtape. Oh, and my favorite song, this one.

प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, चीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s next day. वेलकम बैक टू रेडियो मस्ती 24/7. यस, मस्ती 90s मिक्सटेप चल रहा था. यस, वी आर एट दैट पॉइंट जहां पे चल रहा था. एंड जस्ट लाइक दैट, आज के इस मिक्सटेप का कैसेट ऑलमोस्ट एंड तक आ गया है. आज क्या क्या निकला इस कैसेट से? बॉटल का ढक्कन बना मेजरिंग कप, खिड़की की ग्रिल बनी हमारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन डेक, बेडशीट का एक इनोसेंट सा लूज थ्रेड मिला और हमने पूरी सिलाई के लिफाफे खतरे में डाल दिए, बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स के नए ने ब्रेकफास्ट से पहली इंजीनियरिंग का प्रैक्टिकल करवाया, बुक्स के बीच फूल दबाए गए और एक वेट बेडशीट ने पूरी रस्सी को ऐसा चैलेंज दिया कि बम्बू लाओ ऐसा करना पड़ा. बट आज सिनेमा की मेमोरीज भी कुछ काफी कमाल की थी, बॉम्बे से लेकर देन कौन में मनोज वाजपेयी टू खामोशी द म्यूजिकल एंड देन विरासत. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आई लव ओपनिंग द 90s विद यू, बिकॉज जितना लगता है ना कि अरे ये सब तो याद कर लिया होगा, उतना ही कोई नया ड्रॉर जो है वो खुल जाता है. एक तरफ वो मेमोरीज जो हम सबके घर में ऑलमोस्ट सेम स्क्रिप्ट के साथ चल रही होती, धागा मत खींचना, फ्रिज को बंद करो, कपड़े उतारो, बारिश आ रही है. एंड ऑन द अदर साइड वो फिल्म्स जो हमने काउंटलेस टाइम्स देखी, बट डेकेड्स लेटर यू डिस्कवर वन टाइनी बिहाइंड द सीन स्टोरी एंड सडनली अच्छा तो ये ऐसा हुआ था. मे बी दैट्स द फन ऑफ लुकिंग बैक, यू डोंट नेसेसरीली डिस्कवर अ डिफरेंट पास्ट, समटाइम्स यू सिंपली डिस्कवर मोर ऑफ इट. और फिर एक प्रेस्ड फ्लावर किसी पुरानी किताब से गिरता है, कोई स्मेल, कोई साउंड, कोई गाना रैंडमली मिल जाता है एंड विदाउट परमिशन, विदाउट वार्निंग, यू आर देयर उसी घर में, उसी गली में, उसी एज में फॉर जस्ट अ फ्यू सेकंड्स. मैं आपकी 90s वाली आंसरा, यस दिस वाज अनदर राइड ऑन मस्ती 90s मिक्सटेप. कैसेट खत्म हुई है दोस्त, कलेक्शन बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ट्रस्ट मी 90s के ड्रॉअर में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी हैं जिन्हें देखकर हम कहेंगे कि ओ गॉड ये मैं कैसे भूल गई. सो अंटिल वी ओपन दैट ड्रॉअर अगेन, कीप द म्यूजिक प्लेइंग, कीप दोस मेमोरीज रियली क्लोज टू योर हार्ट एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो मस्ती 24/7. अंतरा इज साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड टेक केयर.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: मैं कोई शेर न भूले से कहूंगा तुझ पर, फायदा क्या जो मुकम्मल तेरी तहसीन न हो। कैसे अल्फाज के सांचे में ढलेगा ये जमाल, सोचता हूँ कि तेरे हुस्न की तौहीन न हो। हर मुसव्विर ने तेरा नक्श बनाया, लेकिन कोई भी नक्श तेरा अक्स बदन बन न सका। लबो रुखसार में क्या क्या न हंसी रंग भरे, पर बनाए हुए भूलों से चमन बन न सका। शायरों ने तुझे तमसील में लाना चाहा, एक भी शेर न मौजू तेरी तस्वीर बना। तेरी जैसी कोई शय हो तो कोई बात बने, जुल्फ का जिक्र भी अल्फाज की जंजीर बना। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, स्वागतम, खैर मकदम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल कर रहा हूँ, दोनों बाहें फैला कर आपका स्वागत कर रहा हूँ। सिंगापुर, आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूँ समर, लेकर आ गया हूँ वो शो जिसका इंतजार आपको भी रहता है और मुझे भी, क्योंकि यहाँ होती है हमारे पसंदीदा बॉलीवुड के लेजेंड्स की बातें, जिन्हें आपके लिए सुनना जितना खूबसूरत एहसास होता है उतना ही मुझे कहना अच्छा लगता है, आपसे बातें करना अच्छा लगता है। तो आज की जो हमारी लेजेंड है उनके लिए जावेद अख्तर साहब की लिखी नुसरत फतेह अली साहब की गायी कवाली की एक लाइन मुझे याद आ रही है, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी है हमारी आज की लेजेंड रेखा, जिनको बयां करने लगे तो अल्फाज जरा ना काफी से लगते हैं। क्या कहिएगा उनके हुस्न का, उनके अदाओं का, और उस पर वो मदहोश करती आवाज। है कोई जवाब आपके पास? नहीं ना, सब कुछ लाजवाब है। एक्ट्रेस रेखा के फैन हम भी हैं और आप भी, तो आज हम जानेंगे उनकी जिंदगी के कई जाने और अनजाने पहलुओं के बारे में। तो बात शुरू करें उससे पहले म्यूजिकल तड़का लगा लें। ये छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक आ रहा है और उसके बाद रेखा जी की जिंदगी के बारे में हम बात करने वाले हैं अपने इस शो लेजेंड्स पर, इसलिए कहीं जाएगा मत, सिंगापुर सुनते रहेगा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, सिंगापुर्स ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक।
2: क्या कहा?

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
2: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
3: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
4: It's a Masti Partner event.
5: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
6: कहा था ना, इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के पार आपसे मिलूंगा। मैं समर एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर लेजेंड्स। आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो। और आज हम जिस लेजेंड की बात कर रहे हैं उनका नाम है भानु रेखा। जानते हैं भानु रेखा को? जी, रेखा जी का असली नाम भानु रेखा ही तो है। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को, यानी 10 अक्टूबर 1954 को मद्रास में हुआ था। उनके पिता साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता थे जेमिनी गणेशन, और माँ फेमस तेलुगु एक्ट्रेस थी पुष्पावली। जब रेखा पैदा हुई तब इनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी और इनके पिता ने उन्हें कभी खुशी खुशी स्वीकार नहीं किया। माँ और बहनों के साथ रेखा का बचपन कटने लगा, लेकिन अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था तभी परिवार को आर्थिक तंगी के साए ने घेर लिया। हर तरह की कोशिश की गई पर अंत में एक ही रास्ता निकला कि रेखा, जो इस वक्त महज 13 साल की थी, वो फिल्मों में काम करें। लेकिन ये बात रेखा को बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि भानु रेखा फिल्मों में काम करना ही नहीं चाहती थी, बिल्कुल नहीं। हर उस उम्र के बच्चे की तरह वो भी खेलना चाहती थी, मजे करना चाहती थी, आजाद रहना चाहती थी। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं कि उन्हें वो करना पड़ा जो उस वक्त उनके परिवार के लिए जरूरी था। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि वो सिर्फ एक फिल्म में काम करेंगी, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि माँ आप मुझे ये कह रही हो। माँ ने भी बच्ची को समझाया कि तुम्हें काम करने में बहुत मजा आएगा, बहुत सारी जगह घूमने को मिलेगा, और घूमना तो रेखा को अच्छा लगता ही था, तो वो मान गई। फिर रेखा ने तमिल फिल्मों में छोटी भूमिकाओं से शुरुआत की, लेकिन ये सिलसिला सिर्फ एक फिल्म पर रुका नहीं बल्कि ये तो बस शुरुआत थी। आगे तो सफलता की कई तस्वीरें इस रेखा से ही बनानी थी। तमिल फिल्मों के बाद छोटी सी रेखा कैसे पहुंच गई मुंबई और यहाँ किन परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा, ये सब बताऊंगा। लेकिन एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद ये इंटरेस्टिंग कहानी जारी रहेगी सिंगापुर के एकमात्र हिंदी रेडियो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। आप भी कहीं जाइए मत, और अगर जाना बहुत ही जरूरी है तो जल्दी से लौट कर आइए, और जो लोग कहीं नहीं जा रहे हैं वो गाने साथ में गुनगुनाइए और मुस्कुराइए। आप हैं समर के साथ।
7: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें कर

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात

0: India at 43rd edition of Zaxxalam India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxalamindia.com.
1: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा, डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा It's time for Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
2: आप सुन रहे हैं Legends फिर से समर के साथ.
3: Welcome back to your very own show, Legends. आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ और आज हम बात कर रहे हैं रेखा जी की. मैं बता रहा था आपको कि साउथ की फिल्मों में कुछ काम कर लेने के बाद रेखा जी की मां ने फैसला किया कि अब यहाँ नहीं बॉलीवुड में काम करेंगी रेखा, और इसके लिए उन्हें अपना घर छोड़कर मुंबई आना पड़ा. महज 14-15 साल की उम्र में ये सब कर पाना जरा मुश्किल था, वो भी तब जब उनकी माँ उनके साथ नहीं थी. माँ बीमार थी इसलिए उनके साथ उनकी आंटी को भेजा गया. उस वक्त न तो हिंदी उन्हें अच्छी तरह से आती थी और न ही वो एक टिपिकल खूबसूरत नॉर्थ इंडियन लड़की जैसी दिखती थी जिसे फिल्मों में बतौर हीरोइन लिया जाए. रंग भी ऐसा नहीं था जिसे सोसाइटी खुशी से एक्सेप्ट करती हो. कुल मिलाकर मोटी सी सांवली हिंदी न जानने वाली रेखा को हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए भेज दिया गया. रेखा बताती है कि आई यूज्ड टू हेट एवरी मोमेंट ऑफ माय लाइफ देन. मुझे आजादी चाहिए थी और यहाँ सुबह 9 से रात के 10-11 बजे तक काम करना होता था, पर घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए काम चलता रहा. एक इंटरव्यू में रेखा ने बताया था कि उस वक्त इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग हिंदी या पंजाबी में बात किया करते थे और उन्हें पंजाबी बिल्कुल नहीं समझ में आती थी. वो आगे कहती हैं कि तब काफी सारे लोग पंजाबी में मुझे कुछ कहा करते थे और मैं हंस देती थी. अब जब मुझे इस भाषा की समझ है तो वो बातें याद करके मुझे बड़ा बुरा लगता है कि एक छोटी लड़की जिसे आपकी भाषा भी नहीं आती, लोग उसे क्या क्या कहते थे. वो अच्छी बातें बिल्कुल नहीं थी. सन 1969 में रेखा की विश्वजीत के साथ पहली हिंदी फिल्म आई अनजाना सफर. इस अनजाना सफर के बाद कैसे बढ़ा रेखा का फिल्म इंडस्ट्री में सफर जानेंगे, पर उससे पहले सुन लेते हैं ये खूबसूरत नगमे जो रेखा जी पर ही पिक्चराइज किए गए हैं. उनकी फिल्मों से लिए गाने सुनिए और सुनते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव, जहां पर समर कर रहा है आज रेखा जी की बातें. वापस आता हूं इस ब्रेक के बाद.

0: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी।
1: क्यों, सोचते ही आया ना याद वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
2: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड प्रेशर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानी रॉयल मिठाई एंड नमकीन। अर्ली बर्ड प्राइसेस फ्रॉम $72 प्लस ऑनवर्ड्स अंटिल 11th October. For more details, call 6235-8840 or log on to shahimaharani.com. Happy Diwali.
3: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
4: It's a Masti Partner event.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर चल रहा है लेजेंड्स। मैं हूं समर आपके साथ और आज मैं बात कर रहा हूं रेखा जी की, जिन्हें एक पहेली माना जाता है, जिनकी जिंदगी को किसी रहस्य से जोड़कर देखा जाता है। मेरी इन बातों से शायद जो मैं बातें रेखा जी के बारे में बता रहा हूं उनसे कुछ लोगों के मन की पहेली सुलझ जाए, क्योंकि मुझे तो वो इतनी सरल लगती हैं जितने आप और हम हैं। तो रेखा जी की बॉलीवुड में जो पहली फिल्म हिट हुई जिससे उन्हें थोड़ा बहुत नाम मिला वो थी सावन भादो। इस फिल्म के हिट होते ही उनके घर के बाहर फिल्म मेकर्स की लाइन लग गई थी उन्हें साइन करने के लिए, ऑफकोर्स अपनी फिल्मों में लेने के लिए। रेखा जो फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी वो बहुत खुश थी, वो इसलिए क्योंकि उनकी बहनें और माँ खुश थीं, और बिल्कुल एक बच्ची की तरह उन्हें इस बात को सोचकर भी मजा आ रहा था कि अब वो अपने दोस्तों पर रौब जमा सकेंगी कि वो इतनी फेमस हैं। इसके बाद तो रेखा का फिल्मी करियर चल निकला, एक के बाद एक कितनी ही फिल्में की उन्होंने, लेकिन एक्टिंग के प्रति उन्हें कोई लगाव नहीं हुआ। ये रवैया थोड़ा सा तब बदला जब उनकी घर फिल्म रिलीज हुई। पहली बार उन्हें अपना काम थोड़ा बहुत पसंद आया फिल्म घर में, जो कि उस जमाने की एक बोल्ड सब्जेक्ट पर बनी फिल्म थी। इसमें उनके साथ थे विनोद मेहरा। इस बात के काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स उड़े कि उन्होंने विनोद मेहरा से शादी भी कर ली थी, लेकिन दोनों का साथ ज्यादा वक्त तक नहीं रह पाया। काफी सालों बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में इस बात को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि विनोद उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, वेलविशर थे, बस और कुछ नहीं। अब ये तो वही कह रही है ना, तो उनकी बात माननी पड़ेगी। इसलिए नो रूमर्स, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, आप तो इन खूबसूरत आने वाले गानों पर ध्यान दीजिए। बहुत उम्दा गाने हैं, एक से बढ़कर एक गाने हैं, इन्हें एंजॉय कीजिए, गुनगुनाइए और सुनते रहिए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो नाउ ऑन द गो। उसके बाद हम जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे रेखा जी की लव लाइफ की। स्टे ट्यून।

0: some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
1: It's a Masti Partner event.
2: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी।
3: क्यों? सोचते ही आया ना याद, वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
4: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानी रॉयल मिठाई एंड नमकीन। अर्ली बर्ड प्राइसेस फ्रॉम $72 प्लस ऑनवर्ड्स अंटिल 11th October. फॉर मोर डिटेल्स कॉल 6235-8840 और लॉग ऑन टू shahimaharani.com.
5: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
6: आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता जब मेरी कहानी में तेरा नाम नहीं होता। वेलकम बैक, मैं समर हूं और मैंने कहा था कि मैं लौटूंगा रेखा जी की लव लाइफ आपको बताने के लिए। आगे रेखा जी से जुड़ा जो जिक्र मैं करने जा रहा हूं वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये शेर, जिसके बारे में बात किए बिना रेखा का जिंदगी नामा पूरा नहीं माना जाएगा। दरअसल ये बात है उस शख्स के बारे में जिन्होंने उनकी जिंदगी में बहुत खास जगह बनाई। उनका नाम है अमिताभ बच्चन। रेखा जी की अमिताभ बच्चन से पहली मुलाकात फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई थी और यही उनकी साथ में पहली फिल्म भी थी। तब अमिताभ शादीशुदा थे। शुरुआत में दोनों का रिश्ता काफी गुपचुप में चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे सबको खबर होने ही लगी। लेकिन दोनों में से किसी ने भी इस रिश्ते को दुनिया के सामने खुलकर स्वीकार नहीं किया। कुछ मौकों पर रेखा ने जरूर साफ शब्दों में न सही पर दबी जुबान में एक्सेप्ट किया कि उनका और अमित जी का कोई रिश्ता है जो बहुत खास है। और जब इन दोनों के अफेयर की खबरें पूरे परवान पर थीं, तब ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा माथे पर सिंदूर लगाकर आई और इस बात ने शादी से हटाकर मीडिया का ध्यान रेखा की ओर खींचा। कहा जाता है कि एक बार जया बच्चन जी ने अमित जी की एब्सेंस में रेखा को डिनर पर इनवाइट किया अपने घर और तब उनसे नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वो उनके पति से दूर रहें। इसके कुछ वक्त बाद यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म सिलसिला का ऐलान किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक रियल लाइफ लव स्टोरी पर बेस्ड थी। बड़ी बात थी कि फिल्मों से दूरी बना चुकी जया बच्चन ने इस फिल्म में वो रोल करना स्वीकार किया जिससे वो अब असल जिंदगी से भी गुजर रही थी, यानी अमिताभ बच्चन की पत्नी का किरदार। फिल्म हालांकि हिट तो नहीं रही, लेकिन रेखा अमित जी की कहानी के करीब होने के कारण चर्चा में खूब रही। इस फिल्म के बाद दोनों ने एक दूसरे से भी दूरी बना ली। आज भी खुलकर न सही पर लफ्जों के इशारे से कई बार रेखा जी कही जाती हैं कि वो मेरी जिंदगी में बहुत खास थे और बहुत सी चीजें उन्होंने मुझे सिखाई। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार वो कौन था जिससे शादी करने के लिए रेखा ने हाँ की थी। लेकिन उससे पहले ये म्यूजिकल ब्रेक आपका इंतजार कर रहा है, आइए इसे एंजॉय करते हैं। सुनते रहिए रेडियो 24/7 लाइव सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो।

0: The strongest people are those who win battles we know nothing about. Radio Masti 24/7 support World Mental Health Day.
1: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ.
2: वेलकम बैक. शो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है. मैं हूं समर, आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर रेखा की कहानी मेरी जुबानी. अमिताभ बच्चन से अलगाव होने के बाद रेखा की जिंदगी में अकेलापन आ गया था. वो किसी का अपने करीब न होना मिस करती थी. शादी करके घर बसाना चाहती थी, बस यही ख्वाहिश थी इनकी. कुछ सालों बाद उन्होंने फिल्मों से ब्रेक भी ले लिया क्योंकि उनका मन भी फिल्मों से उचट रहा था. लगभग 3 सालों के ब्रेक के बाद रेखा को फिल्म ऑफर हुई खून भरी मांग. वापस लौटी रेखा ने देखा कि अब इंडस्ट्री में कई नई हीरोइंस आ चुकी हैं. रेखा की फिल्म खून भरी मांग को बहुत एप्रिसिएशन मिला और साथ ही अवार्ड्स भी. इस फिल्म के लिए अवार्ड मिलना वो कई मायनों में खुद के लिए अहम मानती हैं क्योंकि तब उन्होंने महसूस किया कि एक्टिंग भी एक जिम्मेदारी की तरह है. इसके कुछ वक्त बाद एक कॉमन फ्रेंड के जरिए रेखा का परिचय होता है निकिता शाह और हॉटलाइन ग्रुप के मालिक मुकेश अग्रवाल से. ये सिलसिला फोन पर बातचीत से शुरू हुआ था और कई दफा फोन पर बात होने और बमुश्किल चंद मुलाकातों के बाद मुकेश ने रेखा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और रेखा ने भी हाँ कह दिया था. दोस्त मुकेश की काफी तारीफ किया करते थे. He was a rich and successful businessman और पिछले दिनों हुई फोन पर बातों में सब कुछ ठीक ही लग रहा था. रेखा मुकेश के घर वालों से मिली जिन्होंने भी दोनों के इस बड़े फैसले पर खुशी जाहिर की. इसके बाद एक रात दोनों शादी के लिए तैयार होकर निकल पड़े. वो एक मंदिर पहुंचे जहां पर काफी भीड़ थी, इसलिए वो वहां नहीं गए. आगे एक और मंदिर था जो बंद हो चुका था क्योंकि रात का समय था. तो उसी बड़े मंदिर के सामने एक छोटा मंदिर था जहां कोई नहीं था. बंद तो वो भी हो चुका था लेकिन पुजारी उसी परिसर में ही सोया करते थे. तो उन्हें उठाकर मुकेश जी ने कहा कि आपको हमारी शादी करवानी है. अभी इतनी रात को रेखा की शादी करवानी है? पुजारी इसके लिए राजी हुए या नहीं और क्या है आगे की कहानी बताऊंगा इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद. इंतजार कर रहा हूँ मैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर. दिस इज सिंगापुर्स ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो.

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
3: It's a Masti Partner event.
4: आप सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
5: हेलो एंड वेलकम बैक। लेजेंड शो चल रहा है, मैं हूं समर आपके साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। ये सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि रात में मुकेश और रेखा पहुंचते हैं एक मंदिर, पुजारी को उठाते हैं कि हमारी शादी करा दो। अब क्योंकि ऐसे लोग रोज रोज तो उनके मंदिर में आते नहीं थे, इसलिए वो मान गए और रात लगभग 10:30 बजे दोनों ने शादी की। और रेखा खुशी खुशी एक लेजिटिमेट सरनेम पाकर रेखा अग्रवाल बनकर घर लौट आई। हालांकि रात के समय भगवान के शयन के बाद पुजारी के द्वारा करवाई गई शादी की वजह से उन्हें उस मंदिर की पूजा विधि से बेदखल भी कर दिया गया था, पर शादी तो हो गई थी और ये खबर अब सबको पता भी होने लगी थी। अचानक मिली इस खबर से लोग और उनके दोस्त सब अचंभे में थे। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, पर जल्द ही रेखा ने महसूस किया कि उनके पति मुकेश ढेर सारी दवाइयां खाते हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। पहले पहल तो उन्होंने इन सब बातों को नकार कर सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, लेकिन एक हद के बाद उन्होंने हार मान ली और उन्होंने इस रिश्ते को स्पेस देने की सोची। उसी के बाद एक बार जब रेखा देश से बाहर गई हुई थी, मुकेश ने उन्हीं के एक दुपट्टे से खुद को फांसी लगा ली। इस खबर को सुनकर सभी को झटका लगा और मीडिया से लेकर आम लोगों तक ने इस सब के लिए रेखा पर ही इल्जाम लगाए। लेकिन रेखा खुद इस बारे में क्या कहती हैं, ये जानकर शायद आप हैरान हो जाएंगे। ये हैरानी वाली बात मैं आपको बताऊंगा इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, कहानी सस्पेंस की, कहानी रेखा की, मेरे यानी समर के साथ। दिस इज सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो। नाउ आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।

सजना ते सिधा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति सुमंग था खेलत भुज मेलत लपट जपट राधा ललिता चंगा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी।

0: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxon India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition standia, cultural entertainment and family fun. 16th se 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.
1: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी।
2: क्यों? सोचते ही आया ना याद, वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
0: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानी रॉयल मिठाई एंड नमकीन। Early bird prices from $72 plus onwards until 11th October. For more details, call 6235-8840 or log on to shahimaharani.com.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: ब्यूटीफुल गॉर्जियस एक्ट्रेस रेखा की बात चल रही है आज हमारे शो लेजेंड्स पर। मैं हूँ समर, आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो नाउ ऑन द गो। रेखा जी से जब भी मुकेश अग्रवाल के साथ उनकी शादी के बारे में और इस घटना के बारे में पूछा जाता है तो वो मुस्कुरा कर कहती है कि हो सकता है मेरे ये बोलने पर लोग मुझे बुरा समझें, पर मैं थैंकफुल हूँ उस वक्त की, क्योंकि तभी मुझे पता चला कि दुनिया और लोग वाकई में क्या होते हैं। तभी मैंने जाना कि अपने कौन है और कौन आपको धोखा दे रहे हैं। आज मैं जैसी हूँ, जहाँ हूँ, उसमें इस सब का भी हिस्सा है, क्योंकि तब मुझ में जो समझ आई वो मेरे अब तक की जिंदगी में बहुत काम आई है। सोचिए कितनी पॉजिटिव है वो, और लोगों ने उन पर जाने कैसे कैसे इल्जाम लगाए, बस इसलिए क्योंकि उन्हें जिस प्यार की तलाश थी वो तलाश कभी मुकम्मल न हो पाई। उन सभी लोगों से जिन्होंने उन्हें गलत समझा और उन लोगों से जिनसे उन्होंने उम्मीद की जो पूरी न हो पाई, उन्हीं के लिए रेखा जी कहती हैं।
2: मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा

0: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Musti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
1: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
2: It's a musty partner event.
3: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
4: हेलो एंड वेलकम बैक। दीवा रेखा जी सबको पसंद है और आज उन्हीं की बात लेकर मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। मैं हूँ समर, आप सुन रहे हैं रेडियो मस्जिद 24/7 लाइव सिंगापुर्स ओनली हिंदी रेडियो, जहाँ पर लेजेंड्स के जरिए मैं आज रेखा जी की कहानी सुना रहा हूँ आपको। रेखा जी की एक्टिंग, उनका डांस, उनकी अदाएं सब सीखना चाहेंगे, मगर अगर सबसे बड़ी बात उनसे कुछ सीखने की है तो वो है उनकी पॉजिटिविटी। जी हाँ, बचपन से जिंदगी में जितना संघर्ष उन्होंने किया, करियर में शुरुआती उतार चढ़ाव, प्यार की उनकी तलाश, नाकामयाब शादी,

सबके बाद तो कोई भी टूट सकता है, लेकिन रेखा अपनी लाइफ की हर नेगेटिव बात के लिए शुक्रिया अदा करती है, शुक्रगुजार है। कहती है कि इन सब ने मुझे वो बनाया जिस पर मुझे गर्व है। कितने लोग हैं जो इस तरह से सोच पाते हैं। साथ ही अपनी अदायगी का श्रेय भी वो खुद को नहीं देती। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि उमराव जान जैसी फिल्म जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला, कैसे किया आपने ये सब और कैसा लगता है ये इतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिली उस पर, इस पर वो कहती है कि मेरी एक्टिंग की शुरुआत पैशन से नहीं जरूरत से हुई थी, इसलिए मैंने एक्टिंग को काफी दिनों तक सीरियसली लिया ही नहीं। उमराव जान जब मुझे ऑफर हुई तो मुझे उर्दू का लफ्ज तक नहीं आता था। ये तो मुजफ्फर अली की काबिलियत थी कि फिल्म इस मुकाम तक पहुंची। और जहां तक मेरी एक्टिंग की बात है तो मेरी जिंदगी उस वक्त जिन मरहलों से गुजर रही थी उन्हीं का असर था और शायद वही मेरी एक्टिंग में भी नजर आया। उमराव जान में मैं कहीं अपने आप को महसूस कर पा रही थी। हाउ डाउन टू अर्थ और उनकी इसी खासियत के नाम ये अगले गाने। फिर लौट कर आऊंगा, मैं यहीं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं हूँ समर, आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो। स्टे ट्यून्ड।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: समर इधर, ध्यान किधर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव आप सुन रहे हैं और मैं यहाँ पर लेजेंड्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज हम बात कर रहे हैं रेखा जी की। रेखा जी बॉलीवुड की एजलेस डीवा। जी हाँ, अक्सर पार्टीज और अवार्ड फंक्शंस में बनारसी साड़ी और लंबे खुले बालों में जब रेखा जी आती हैं, तो आज की हीरोइंस भी एक बार को तो फीकी सी पड़ जाती हैं उनके रंगत के आगे। अपने एवर यंग लुक का क्रेडिट वो रेगुलर योग और हेल्थी फूड को देती हैं। वो आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं और कोई मिल गया और क्रिश जैसी फिल्मों में वो ऋतिक की माँ और दादी का रोल बखूबी प्ले कर चुकी हैं। उनकी एक फिल्म सुपर नानी भी काफी चर्चाओं में रही थी। फिल्म फेयर, आईफा, स्टारडस्ट, जी सिने जैसे कई अवार्ड के अलावा एक नेशनल अवार्ड और पद्मश्री भी मिल चुका है। अखबारों और मैगजीन्स की सुर्खियों में रहने वाली रेखा के बारे में एक अनोखी बात यह है कि उन्होंने कभी कोई किताब और कोई अखबार या मैगजीन अपनी जिंदगी में पढ़ी ही नहीं, और इन सब के बावजूद उनके पास एक बड़ी सी लाइब्रेरी है जिसमें किताबों का बड़ा कलेक्शन है। क्या दिमाग में सवाल उठ रहे हैं? दरअसल उनकी लाइब्रेरी के कलेक्शन में लिखावट वाली किताबें नहीं है, बल्कि सिर्फ तस्वीरों वाली किताबें, जिन्हें देखना उन्हें बड़ा पसंद है। रेखा, नाम भले ही दो अक्षरों में सीमित हो, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी जिंदगी के हर रंग से भरी है। वो खूबसूरत की मंजू सी चुलबुली हैं, तो सिलसिला की चांदनी सी प्यार के हाथों मजबूर भी। उनमें उमराव जान की संजीदगी भी है, तो बीवी हो तो ऐसी की शालू जैसी समझदारी भी, और ये हर रंग उनके फैंस को पसंद है। We all wish her 100 more young and ageless years. रेखा जी आप स्वस्थ रहें और यूं ही हम सबको एंटरटेन करती रहें, अपनी एक्टिंग के जलवे बिखेरती रहें। आपको सलाम। समर के सलाम के बाद हम आपको सलाम करने के लिए समर एक बार फिर से लौट आया है, मतलब जाने के लिए इजाजत लेने आया हूँ। दे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा एक और लेजेंड की कहानी लेकर। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड पीपल अराउंड यू। बाय बाय, नमस्कार।
2: कायदा कायदा कायदा, हर चीज में कायदा, आखिर इसका फायदा। कायदा तोड़ के सोचो, एक दिन चांद निकलता नीचे से और मैदान पे रखा होता।

0: सोचो, सूरज का रंग नीला होता
1: होता
0: और पेड़ों का रंग लाल
1: लाल,
0: पंछी रहते पानी में
1: वाह,
0: और मच्छी गगन विशाल
1: वाह वाह वाह।

अच्छा सोचो, नहीं सोच के देखो, खेत में उगती टॉफी, पेड़ पे फलते लड्डू पेड़े और नल खोलो तो

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
4: Best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 Live. Have a Masti Bhara weekend.

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है।
1: तुमको
0: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
2: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
2: रात अकेली
3: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड। मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: फाइनल है, कभी आई लव यू नहीं बोलना है, राइट?
1: राइट.
0: कूल. वैसे नेवर से आई लव यू को फ्रेंच में कैसे बोलते हैं?
1: नदी जमे जतिन.
0: नदी जमे जतिन. सो सेक्सी.

जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पल को तकाया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आंख तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है।

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: The perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.
3: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में? वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स। It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

एक बात समझ में नहीं आती, अच्छे लोग क्यों मरते हैं, अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है, रोने वाला क्यों हंसता है, हंसने वाला क्यों रोता है। सह लिया, बहुत सह लिया, खामोशियों में बहुत रह लिया, अब दिल का शोर सुन, इरादे कुछ और सुन।

देश बदल गया, सब कुछ बदल गया। एक थप्पड़ मारोगे तो 100 थप्पड़ मारेंगे, आंख उठा के देखोगे तोड़ देंगे, फोड़ देंगे।

एक जज्बा है, जुनून है, एक रुतबा है, फोर्स बगावत है, एक पागलपन है, शहादत है, एक दीवानगी है, फोर्स एक आवाज है, तेरी आवाज, मेरी आवाज, हम सबकी आवाज, 120 करोड़ एक साथ मिलकर चिल्लाए तो पूरी दुनिया को सुनना ही पड़ेगा।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
4: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: दिन शुरू हुआ नहीं कि यहाँ पर भीगे होंठ तेरे, उफ गंदी बातें, भजन वाला घंटा अभी अभी खत्म हुआ है और इनको देखो जरा, भीगे होंठ तेरे। आज का ये पहला गाना मैंने नहीं चलाया, मैंने नहीं लगाया।
1: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
2: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
1: लगे अब्रसा मुझे तन तेरा। ओहो, कवि की कल्पना पे फोकस करें, कवि की कल्पना पे फोकस करें मैडम।
0: हाँ, पर कवि तो तन पे फोकस कर रहा है ना, कल्पना पे आप फोकस करो। गुड मॉर्निंग एंड दिस इज मस्ती मैडनेस। और हो भी कह सकता है, फ्राइडे सुबह है और अंतरा है, रेणुका है, तो ऑब्वियस है ना भाई कि यहाँ पर तो एक ही चीज चल रही होगी। हाँ भाई, कैसा रहा तुम्हारा हफ्ता पूरा का पूरा? हमारी तो ज्यादा बातें ही नहीं हुई, क्या चल रहा है मतलब?
1: Oh my God, यही तो वो फीलिंग है जो फील करानी थी कि देखो कैसा लगता है मुझसे बिना बात करे, कैसे जी पाओगी लड़की? आओगी ना फ्राइडे को, फिर बात करेंगे।
0: अच्छी वाली जी पाऊंगी, जी एच आई जे सब पाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आइए चलो ढंटड़े शुरू करते हैं हमारा यहाँ पर आज का शो। दिस कॉल्ड मस्ती मैडनेस। मस्ती मैडनेस पे सारी टेढ़ी बड़ी बातें, जी हाँ, सुबह सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएंगी और चलेंगी 10 बजे तक। सो तैयार है, तैयार है, आप बताइए ना।
1: बिल्कुल यलगार हो।
0: गुड मॉर्निंग,
3: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड एनीवेयर एनीटाइम द देसी वे।

0: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी।
1: क्यों, सोचते ही आया ना याद तो दिवाली वाला शाही स्वाद।
2: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानी रॉयल मिठाई एंड नमकीन। Early bird prices from $72 plus onwards until 11th October. For more details, call 6235-8840 or log on to shahimaharani.com.

0: are tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: गुड मॉर्निंग एंड वेलकम रेडियो मस्ती 24/7 पर. भाई मैं पूरे हफ्ते अंतरा से क्या नहीं मिली कि मेरी तो तबीयत ही खराब हो गई.
2: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो.
3: दिस इज मस्ती मैडनेस.
4: ऐसा ही होता है, इसीलिए कहते हैं जन्मदिन इतने दिन दूर मत रहा करो, है ना.
1: आज ये सुबह से ना जिस तरह के गाने चल रहे हैं, जिस तरह की बातें अब्र और बदन और पता नहीं क्या क्या सुबह सुबह से लगी हुई है, मुझे तो इस स्टूडियो में इसके साथ बैठने में घबराहट हो रही है. अंतरा क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ, कहाँ से इतनी भरी भरी आई हो तुम आज, क्या बात है
4: बताओ. सुबह सुबह फ्राइडे, वो भी नॉट बैड.
1: कुछ सोचो, मतलब हद हो गई है. एक एक तुम हो जो हमेशा सिर्फ यही बातें सोचती, और एक ये लड़का है, ये बेटा है, देखो इस बेटे को, जो कि घर से दूर काम करता है. तो उसने अपनी मम्मी के साथ में एक लैपटॉप सेटअप कर दिया, वीडियो कॉल जो 24/7, मतलब वो दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं. वो काम कर रहा होता है, उसकी मम्मी भारतवर्ष में होती है, वो अमरीका में होता है, तो भी मम्मी रात के 3 बजे उठती हैं अगर पानी पीने या कुछ, तो वो सिर्फ कंप्यूटर पर देखती हैं और बेटा वहां काम कर रहा होता है. मतलब क्या बात है, सोचो ऐसे बच्चे भी होते हैं. हाँ सीखो.
4: ये मेरे जैसे तो बच्चा नहीं है, डेफिनेटली, वेरी क्लियरली. मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये सिंगल है?
1: सिंगल ही है, तभी है. और मुझे तो लगता है इसने ना क्लॉड को यूज किया है, ठीक है, टू राइट स्क्रिप्ट्स, कि अगर वो कनेक्शन हट जाए तो ऑटोमेटिकली दोबारा से कनेक्ट हो जाता है. ठीक है, डाइनिंग टेबल पे उसने लैपटॉप अपना रख दिया है, पुराना एक कंप्यूटर लेके, और मम्मी कभी भी उसको देख सकती है. भाई तेरा कुछ ना हो पाएगा.
4: आई हैव नो वर्ड्स एक्चुअली, मतलब क्या ही बोलूं अब मैं इसमें. हम एटलीस्ट मैं तो कुछ ना ही बोलूं तो बेहतर है.
1: इसका कुछ हो भी नहीं सकेगा, ये मम्मी को ही देखता रह जाएगा जिंदगी में, मैं बताती हूँ. मतलब इट्स टफ लिविंग अलोन इन अनदर कंट्री, कह रहा. तो भाई तू किसी और को माँ बना, तू यहाँ पर अपनी माँ के पीछे क्यों पड़ा हुआ.

0: on Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: रेणुका को जापान भेजते हैं, उनको ये वाले कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कराते हैं, फिर ये बहुत सारा माल जीत के लाएंगे हमारे मस्ती मीडिया नेटवर्क के लिए।
2: कितना मतलब लंबी कहानी, आज जापान बहुत सुबह सुबह नहीं जा रहे हम। सीरियसली इतनी सुबह तो हम कभी जापान नहीं गए मस्ती मैडनेस पर ना।
3: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं,
2: क्योंकि वहाँ पर रोती हुई औरतों को मिलते हैं।
1: इसीलिए
2: हाँ, तो क्या खबर लाई हो चमिया, बोलो।
1: हाँ जी हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि वहाँ पे ना कॉन्टेस्ट चल रहा है रेणुका।
2: अच्छा,
1: वहाँ पे ना सोने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, और अगर आप टॉप पे आए ना तो $14,000 मिलेंगे। $14,000
2: सोने के लिए? किसके साथ सोना है, बात तो ये है।
1: हाँ, प्रॉब्लम वही है, अकेले सोना है मैट्रेस के ऊपर।
2: तो 40 भी कम है।
1: आस पास होंगे, मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे दूसरे दूसरे मैट्रेस पे, बट वो दूसरे दूसरे मैट्रेस पे होंगे। वो थोड़ा सा सैड पार्ट है, बट देन मैनेज कर लेना ना, मतलब सोना ही तो है जाके। मैट रेस करके नाम इन्होंने दिया हुआ है। 75 पीपल जो है उनका वो मॉनिटरिंग सर्विस वगैरह, वो तार वार लगाकर 90 मिनट्स में बेसिकली यू हैव टू अचीव द डीपेस्ट, फास्टेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल स्लीप। और जो टॉप प्राइस जीतेगा वो जीतेगा $14,000। मैं कह रही हूँ ये बहुत अच्छा मनी फंड है। आई एम बिकमिंग द शार्क टैंक राइट नाउ, सेंडिंग यू टू जापान। जीत के लाओ,
2: जापान जाओ, वो भी सोने के लिए। मतलब किस तरह के ये विचार है तुम्हारे। तो तुम क्यों नहीं जा रही हो, तुम्हें जाना चाहिए ना। तुम अपनी अपॉर्चुनिटी मेरे नाम क्यों कर रही हो, मुझे शक हो रहा है इस बात पे। बताओ बताओ इसी टाइम।
1: क्योंकि अलग अलग मैट्रेस पे सोना है ना।
2: मुझे पता था। चलो भाई, मेरा इसके साथ ब्रेकअप हो रहा है इस टाइम पर रेडियो मस्ती 24/7 पर। ये गाना मैं बड़े दिनों बाद सुन रही हूँ यार, ब्रेकअप सॉन्ग। इमेजिन हाउ पॉपुलर इट वॉज, राइट? याद है तेरे को?
1: बहुत ही ज्यादा
2: क्रेजी।

0: रेडियो मस्ती 24/7 पर अंतरा आज इतना ऊंचा बोल रही है ना, और हमको ऐसा लग रहा है कि मेरे में आज हिम्मत ही नहीं है. पता नहीं, उफ, इट हैज बीन अ वेरी टफ एंड अ लॉन्ग वीक. कोई तो काम करेगा.
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें, और हमारा ये क्रेजी शो.
2: यही तो वो बात है जो जाता है बिहाइंड द सक्सेस, माय फ्रेंड, बिहाइंड द सक्सेस.
0: अरे यार, बैंड बजा दिया. लोगों के तो सक्सेस के पीछे जाते जाते मेरा अपना जो बैंड बजाना, पूछ

0: मत बाय गॉड की कसम यार, बड़ी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है।
1: आई थिंक जो फिनाले एपिसोड है वो आपका खुद का ही होना चाहिए, द जर्नी।
0: देखो बहन, ऐसा है कि आज तक सिर्फ एक इंसान करण जौहर मुझे ऐसा लगता है जो कि स्टाइल में और बातों में और यू नो द वे ही टॉक्स उसमें छा जाता है। मेरा मन है कि कभी ना कभी वो मेरा इंटरव्यू करे, अगर वो करेगा तो ठीक है, नहीं तो रहने दे यार, मेरे से बेटर कोई है ही नहीं।
1: अरे भाई भाई भाई बोलने का ना भाई भाई, अभी का अभी क्रेजो को फोन लगाते हैं ना, रुको ना, क्या कर रहे हो?
0: रियली नो, बट ऑनेस्टली सबने देखा कि नहीं देखा हमारा बिहाइंड द सक्सेस वाला जो एपिसोड है, जो पॉडकास्ट है, देखा कि नहीं देखा? भाई देखो, ऐसी ऐसी कहानियां जिंदगी में बड़ी इंस्पायर करती हैं यार, बड़ी इंस्पायर करती है। कल डॉक्टर शरद वाला जो शो है ना, आई टेल यू अंतरा, हाउ कैन अ पर्सन डिसाइड टू टेक 1 ऑलमोस्ट 2 million का जो लोन है उसके साथ में एक कंपनी को टेक ओवर करना, मतलब बताओ, कोई बंदा कहता है भैया जीरो से भी चलेगा, लेकिन 2 million के डेट के साथ कौन कंपनी टेक ओवर करता है बताओ? भाई ने टर्न अराउंड कर दिया।
1: बट दैट इज हाउ यू मेक दैट, तभी तो सक्सेस की कहानी ऐसी ही बनती है।
0: टोटली,
1: बिकॉज देयर आर सो मेनी रोड ब्लॉक्स बिहाइंड व्हिच नोबडी सीज। वो आज की डेट में हम लोग सब देखते हैं कि भाई बहुत ही सक्सेसफुल है, बट भाई देखो भी तो उस बंदे ने क्या फाइट मारी है।
0: एग्जैक्टली और कोई आसान नहीं रहा, मतलब शुरुआत में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और ऑब्वियसली रातों की नींद गुम गई, बहुत कुछ हो गया, लेकिन ये एपिसोड देखना जरूर, बिकॉज एवरी एपिसोड बहुत ही कमाल की कहानियां हैं और ये लोग हमारे आसपास रहते हैं, दैट्स द बिगेस्ट थिंग, यू नो, इट्स नॉट समथिंग जो कहीं दूर पर्दे पे।
1: एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ द शो एज वेल, दैट दीस आर द पीपल हु आर अराउंड अस एंड नाउ एंड दे शुड हैव, इनके बारे में, इनकी कहानियों के बारे में बात करनी चाहिए थी, एंड वही हम कर रहे हैं।
0: और मुझे ऐसा लगता है कि ये ह्यूमन लाइब्रेरीज है, यू नो, ये आके जब अपनी कहानियां बताते हैं ना, दे आर जस्ट अमेजिंग। चलो मैं सेंटी हो रही हूँ अपने पॉडकास्ट के बारे में, पर जरूर देखना जरूर गाइज, इट इज ऑन आर ऐप मस्ती मीडिया 24/7 पर, पॉडकास्ट सेक्शन में जाके जरूर देखना, और भी बहुत सारी जगहों पर ढूंढो।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: और भाई इस टाइम तो मैं एक ऐसी बात बताने वाली हूँ कि सिस्टम भी परेशान हो जाए। आप सोचिए कि ट्विंस होते हैं, राइट अंतरा, ट्विंस रामपुर उत्तर प्रदेश की, दो दो खिजरा और तुबा जुबेर, ठीक है। अब बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं, भाई हमारी बायोमेट्रिक की मशीनों ने ये सोचा ही नहीं कि जो 100% आइडेंटिकल वाले ट्विंस होते हैं उनकी तो आंखों के रेटिनाज और फिंगरप्रिंट्स भी सेम निकले, तो फिर मशीन कैसे लेगी? उसको तो यूनिक चाहिए ना ये सारा कुछ। ओए होए,
3: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
4: दिस इज मस्ती। ओह माय गॉड, पॉइंट टू बी नोटेड, माय लॉर्ड।
2: तो अब
4: क्या हुआ,
2: क्या होना है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है यार इस टाइम पर। अब आधार की प्रोफाइलें जो बन रही थी इनकी अपडेट हो रही थी, ठीक है, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की रजिस्ट्रेशन के लिए। अब सिस्टम ने रिजेक्ट कर दिया एक सिस्टर की एप्लीकेशन, बिकॉज वो कहते हैं ये तो ऑलरेडी है हमारे पास, ये तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है क्योंकि फिंगरप्रिंट्स, आयरिस पैटर्न सब कुछ सेम है, तो अब क्या करें? अब मतलब इसमें तो कोई चीटिंग भी नहीं हो रही है। तो अब फैमिली ने सबसे पहले नोट किया कि भाई ये जो फोन होते हैं ना, फोन एक बहन दूसरी बहन का फोन खोल सकती है जो कि आयरिस या फेशियल रिकॉग्निशन से है।
4: True.
2: तब माँ बाप ने कहा कि यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब उनकी हर जगह प्रॉब्लम हो रही है। अब तू सोच, तू एयरपोर्ट पे जा रही है, अभी अभी तू निकली है आगे मशीन से, फिर तू दोबारा निकल रही है तो वो तेरे को रोक लेगा। अच्छा एग्जाम के लिए जा रहे हो, वो कहता है तू तो दोबारा कैसे आ गई, तू अभी तो तू अंदर गई थी। हर जगह उनको परेशानी।
4: फेमस कहानियां है ना कि ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस में ये बहुत होता है कि एक एक बच्चा, एक ट्विन जो है ना हमेशा ही मार खाता रहता है, दूसरे का भी वही मार खाता रहता है।
2: तो अब यहाँ लड़ाइयाँ ये हो रही है कि पहले मैं जाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं रुकना, और वो दूसरा बोल रहा है नहीं नहीं पहले मुझे जाना है क्योंकि इसमें बड़ी परेशानी होती है। अब क्या करें? अब मशीन को अगर ये बोले कि भाई तू डुप्लीकेट अलाउ कर दे, तो मशीन बोलेगी फिर तो सारी दुनिया डुप्लीकेट का फायदा उठाएगी। तो अब करें क्या? मतलब बहुत ही परेशानी, डोंट यू थिंक?
4: बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज ही आ गए हम तो, वैसे ही सुन के कंफ्यूज ही आ गए
2: टोटल।

0: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी।
1: क्यों, सोचते ही आया ना याद वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
2: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानी's रॉयल मिठाई एंड नमकीन। Early bird prices from $72 plus onwards until 11th October. For more details, call 6235-8840 or log on to shahimaharani.com.

0: The strongest people are those who win battles we know nothing about. Radio Masti 24/7 support World Mental Health Day.
1: दूसरे घंटे में एंट्री मारते हुए मासूम मर्दों की बात करेंगे। मुझे बड़े ही मतलब मासूम मर्दों पे तो बहुत ही मतलब लगता है कि हाय हाय हाय कितनी मासूम है, टपक रही है देखो कैसे।
2: ऑफ कोर्स
3: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग।
2: हाँ, सुबह से जापान के हग करते हुए आदमियों को सुन सुन के यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जापान जाना ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन मस्ती मीडिया 24/7। हाँ, यही तो नाम है हमारे ऐप का।
1: भाई यहाँ पे जो है मोरू मियां नाम के ये जो हमारे भाई साहब हैं, तो ये काफी चर्चा में है बांग्लादेश में फिलहाल, क्योंकि पिछले 10 साल में इन्होंने 21 बंदियों के साथ शादी कर रखी है। 21? हाँ जी हाँ जी। तो क्या है कि मोरू मियां ने कहा, मतलब मीडिया को बताया कि ये जो वुमेन आती हैं वो अप्रोच करती हैं, ये मोस्टली उनसे उम्र में बड़ी होती हैं। एंड देन ही फेल्ट मासूमियत, देखो आप इसने फीलिंग्स देखे आप उनकी, कि ही फेल्ट अनेबल टू रिफ्यूज देयर प्रपोजल्स, क्योंकि वो उनको हर्ट या डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने तो मतलब शादी कर ली। अब बात ये है कि सारों के सारे जी किस है उनके नाम नहीं याद हो पाते, तो वो ना एक डायरी में वो कहीं पे लिख के रखते हैं कि इनका नाम ये है, इनका नाम ऐसे करके उनको चलाना पड़ रहा है। उनकी दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है, आप समझने की कोशिश करें। करेंटली वो अपनी 3 पत्नियों और कई सारे बच्चों के साथ रहते हैं, एंड अब वो जो है उनके साथ साथ बाहर जाकर जो है अपना काम वाम जो है वो भी बिल्कुल प्रोसीड करते हैं। बाकियों का क्या हुआ है हमें संवाददाता भेजने पड़ेंगे वहां पे जानने के लिए।
2: तो 21 मतलब 21 कंफर्म्ड है।
1: जी जी,
2: याद रखना तो मुश्किल है ना, मैं इसकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ यार। आई थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल इशू। या मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, और क्या बोलूँ मैं, 21 शादियाँ।
1: वही कह रहा, मासूम मर्द के बारे में क्या ही बोल सकते हैं, कौन ही क्या कर सकता है, बेचारा मना ही नहीं कर पाया। देखो ना उसका वो, देखो ना फीलिंग्स देखो, नहीं, दिल नहीं तोड़ पाया बेचारा।
2: सही बात है, बहुत अच्छा इंसान है, दिल का अच्छा इंसान है, दिल का
1: बहुत ही ज्यादा
2: दिल का।
4: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: आइए आइए हम आपको बताएंगे इस बार एक ऐसी खबर जो आपको लगेगा भाई मतलब छोटी सी चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है. डेडिकेशन देखो डेडिकेशन सीरियसली स्पीकिंग रेडियो मसी 24/7 पर
2: क्रेजी दुनिया क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो.
3: डेडिकेशन तो आप हमारी भी देखे फ्राइडे और फ्राइडे हमारा जो ये है ऐसी ऐसी खबरें लाते रहते हैं आपको. मतलब क्या बात है हमारी डेडिकेशन को भी दाद दे दीजिए दाद
1: खुजली. अब क्या है कि एक 54 साल का इंसान कुमामोटो ठीक है कुमामोटो जापान में उसने क्या किया कि भाई उसके घर में एक कॉकरोच था ठीक है 2-3 साल पुरानी बात है. उसके घर में एक कॉकरोच था अपने अपार्टमेंट में और रात के टाइम अराउंड मिडनाइट मेरा वाला हाल हुआ होगा उसको कि भाई उसने पूरी पूरी बॉटल उठाई इंसेक्टिसाइड की और छिड़क दिया ठीक है जो मैं करती हूँ नॉर्मली. अब उस स्प्रे में देयर वाज सम फ्लेमेबल अल्कोहल एंड प्रोपेलेंट गैसेस जैसे कि प्रोपेन ब्यूटेन. अब वो जो फ्यूम्स उसके कमरे में हुई वो इग्नाइट हुई जैसे ही वो पहुंची एक हीटिंग सोर्स पे नियर हिज कुटात्सु. कुटात्सु इज सपोज टू बी अ ट्रेडिशनल जापानीज हीटेड टेबल. अब उसकी वजह से क्या हुआ कि पूरा पूरा घर पे एक मेजर एक्सप्लोजन हुआ. उससे बालकनी की विंडो जो है वो फूटी साथ ही में बर्न मार्क्स हुए नियर द टेबल एंड इट कॉज्ड माइनर इंजरीज टू द मैन. अब उसके बाद से गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भाई एरोसोल इंसेक्टिसाइड्स जो है दे कैन इजीली कैच फायर और एक्सप्लोड अगर वो ऐसी किसी हीटेड वाली जगहों के सामने हो. तो बेसिकली पॉइंट ये है कि ही ब्लू अप हिज अपार्टमेंट जस्ट टू किल वन कॉकरोच. डेडिकेशन देखो क्यों भाई.
3: नहीं मैं समझ रही हूँ मतलब मैं को ये भी पूछना है मेरे को क्वेश्चन है क्योंकि आप कह रहे थे कि आप भी ऐसे ही करते कि पूरे उसी टाइम पे पूरे घर में आपने स्प्रे. फिर आप रहते कैसे उस घर में वो स्प्रे करने के बाद.
1: देख अगर तो मैं कभी रात को बाथरूम में जाऊं और मुझे वहां पे कोई ऐसी आवाज आ जाए कि भाई कुछ हाँ. तो है यहाँ पर ठीक है और मुझे वो हाँ. चीज दिख जाए तो या तो वो हाँ. चीज रहेगी या मैं रहूंगी उस घर में ठीक है.
3: तो मतलब आप वो करके उसको घर में बंद करके आप घर के बाहर हो गए.
1: नहीं फिर मैं उसको बाथरूम में मार मार के उसको पूरे पूरे स्प्रे करके मैं उस बाथरूम में नहीं जाऊंगी अगले 2 दिन तक जब तक कि उसकी लाश मिल नहीं जाएगी.
3: लाश नहीं मिल जाती.
1: लाश मिल जानी चाहिए. अगर लाश ना मिले ना तो मैंने उस बाथरूम को सील कर देना क्योंकि मैं नहीं जाऊंगी. सीरियसली बहुत टेंशन है मेरी ये वाली बहुत ज्यादा.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: ये इतना स्मूथली ये पूरा का पूरा हो गया ना कि मेरे को समझ भी नहीं आ रहा. चलो बताती हूँ.
2: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें, और हमारा ये
3: इसको आजकल स्मूथ चीजें समझ नहीं आती है. आई थिंक शी लाइक्स इट रफ गाइस, शी लव्स इट रफ. गुड मॉर्निंग, दिस इज मस्ती 24/7. बोलो बोलो.
1: ये सबके साथ है रेणुका. अच्छा आप सभी बताओ जो भी सुन रहे हो मुझे, जिंदगी में हर कुछ एकदम से सही सही चलने लगा, आपको शक नहीं होता कि बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है?
3: लाइक
1: व्हाट इज द इशू, लाइक ये दिस इज नॉट राइट. हाँ तो ऐसा ही है, कुछ ना कुछ ऐसा स्पाइसी होता रहना चाहिए. सो कंबोडिया की ये बात है, तो ये बंदी जो है 8th floor से, ठीक है, नीचे रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, 8th floor से नीचे गिरी, बट शी लैंडेड ऑन दिस मेटल रूफ एक नेबरिंग घर के, वहां पे जाके लैंड की, ठीक है. नाउ शी रिमेन्ड अनकॉन्शियस फॉर अराउंड 30 मिनट्स उस रूफ के ऊपर. फिर अपेरेंटली सो ये जितने भी सीसीटीवी वगैरह उधर से ये लोग ने सारी पूरी कहानी निकाली, कहती है वो 30 मिनट तक बेहोश रही, फिर वो उठी, फिर उसने अपना फोन निकाला, करीबन 20-25 मिनट तक उसने डूम स्क्रॉलिंग की वहां पे बैठे बैठे छत के ऊपर.
3: ओके,
1: फिर वो उधर से नीचे उतरी और वो चली गई.
3: ओके ओके, सो उसने रियलाइज किया कि नहीं कि वो गिरी थी, या मतलब
1: आई हैव नो आईडिया. मैंने कहा ना कि इतना ज्यादा स्मूथ था कि आप 8th floor से नीचे लैंड करते हो, आप अनकॉन्शियस होते हो, उठते हो, अपना इंस्टाग्राम और ये सारा डूम स्क्रॉल करते हो 20-25 मिनट और उसके बाद आप निकल जाते हो. आई मीन
3: भाई देखो, इंसान का फोकस नहीं हिलना चाहिए, फोकस नहीं हिलना चाहिए. रील्स देख रहे हो तो पूरे ऐसे घुस जाओ उसमें कि हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, रील ना छूटे, जान जाए पर रील ना जाए, है कि नहीं?
1: कैसा ये, तो ये बात करते के तो लगा कि ये एक और नशा नशा मुक्ति केंद्र इसके लिए भी खोलना पड़ेगा.
3: अगले दिन ये लगा होगा कि ये दर्द क्यों हो रहा है, ये टांग टूटी कब, क्या हुआ?
1: हाँ

0: some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
1: It's a Masti Partner event.
2: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी,
3: क्यों सोचते ही आया ना याद वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
4: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। Shahi Maharani's Royal Mithai and a Namkeen. Early bird prices from $72 plus onwards until 11th October. For more details, call 6235-8840 or log on to shahimaharani.com. Happy Diwali.
5: वो तोहरी लचके जब कमरिया हसारा जिला हिल मो

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: भाई ऐसा है कि जब तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है और तुम एलिमनी के लिए लड़ाइयां कर रहे हो तो ना ऐसे ऐसे चोरों वाली हरकतों भी ना करो कि लूट लो दूसरे इंसान को. क्यों भाई? गुड मॉर्निंग.
2: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज.
3: This is Masti Madness.
1: Masti Madness पर रेनुका एंड अंतरा. और क्या कहती हैं अंतरा जी?
4: मैं ये कह रही हूँ कि आजकल तो ये जज साहब और साहिबाएं भी काफी जवाब देने लग गए हैं. जब उनको लगता है कि भाई तुम क्या ही बात कर रहे हो, मतलब तुमको क्यों चाहिए, तुम कमा रहे हो,
1: वही तो
4: काहे को लेकर जा रहे हो.
1: इसी खबर की बात कर रही हूँ. कर्नाटका के हाई कोर्ट में जब एक औरत ने डिमांड करा 6,16,300 रुपए पर मंथ फॉर इंटरिम मेंटेनेंस या एलिमनी अपने एक्स हस्बैंड से, तो जज ने बोला कि इफ शी वांट्स टू स्पेंड लेट हर अर्न. मजा आ गया मुझे इस जज की बात देख के. मतलब कुछ औरतें कुछ सिचुएशंस में सोचती हैं कि भैया आप पति से अलग हो रहे हैं, लूट लो इसको, इसको ना निचोड़ लो, मतलब बड़े मजे आ जाएंगे. तो वाइफ के लॉयर ने बोला कि भाई उसको तो चाहिए 6,16,300 रुपए पर मंथ अंडर सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट. फिर उसने क्या बोला, क्यों चाहिए? तो 4 से 5 लाख तो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, नी जॉइंट पेन, फिजियोथेरेपी, फीवर, टेंशन एट्रिब्यूटेड टू द हस्बैंड्स नेग्लिजेंस. ठीक है, उसके अलावा 15,000 से 50,000 रुपए क्यों चाहिए? क्योंकि उसको बैंगल्स, चेन, सैंडल्स, वॉचेस, स्टिकर्स, कपड़े मैचिंग द हस्बैंड्स ब्रांडेड अटायर लाइक कैल्विन क्लाइन, और 60,000 उसको खाने के लिए चाहिए महीने के. ठीक है, तो जज ने बोला कि एक अकेला इंसान, ना तो उसके पास कोई बच्चा है, ना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी.

0: वो इतने पैसे अपने पे पर मंथ कैसे खर्च सकता है? मतलब सेक्शन 24 रीजनेबल सपोर्ट बोलता है, ये थोड़े कहता है कि तुम पिल पड़ो, मतलब है
1: गॉड। बट देन दिस इज सच अ सेन आस्क। आई मीन लॉजिक की बात है भाई, अगर तुमको तुम्हारे इतने खर्चे हैं तो व्हाई डू यू वांट इट फ्रॉम हिम?
0: तो हिल जाओ अपने, हाँ घुटने तुम्हारे दर्द होते हैं, हैं तुमको फिजियोथेरेपी तुम्हें चाहिए, तो तूने ब्रांडेड कपड़े लेके क्या करना है? जाना तो तूने हॉस्पिटल ही है या बैठे रहना है तुम्हें?

टू रूलिंग द काउंटडाउन. ये है मस्ती टॉप 20. नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट द वीक्स टॉप चार्ट.

0: कैबी लेन का नाम आई एम श्योर कई सारे लोगों ने सुना होगा. ये काफी मतलब सोशल मीडिया स्टार टाइप है एंड अपने अफ्रीका के अपने नेटिव कपड़ों में वो काफी हिंदी एंड अलग अलग लैंग्वेजेस के कंटेंट बनाते हैं.
1: अच्छा वैसे टाइप्स दैट टाइप्स
2: क्रेजी दुनिया क्रेजी खबरें और हमारा ये
1: नहीं तो मुझे नहीं पता था बट शुक्र है कि आपने मुझे आज बहुत एनलाइटन कर दिया. थैंक यू वेरी मच. रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है मस्ती मैडनेस.
0: भाई ये काफी काफी पॉपुलर है एज एन इन्फ्लुएंसर एंड काफी पुराने भी है इस एरिया में काफी मतलब उस तरह से. बट अभी आपने वो डिवोर्स वाली बात की तो मुझे इन्हीं का केस जो है याद आ गया. सो कैबी लेम जो है इन्होंने शादी की ठीक है वेंडी नाम की बंदी से. 6-7 महीने होंगे शादी करके ठीक है एंड उसने डिवोर्स मांगा. डिवोर्स के बाद उसने कहा कि बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी सच अ बिग नेम एंड ही वॉज अर्निंग क्वाइट अ लॉट एंड एवरीथिंग. उसने कहा कि आप तुम्हारी एलिमनी में एसेट्स जो है वो डिवाइड होनी चाहिए ठीक है. तुम्हारे आधे एसेट पे मेरा भी हक है. डिवोर्स के बाद ट्विस्ट तब आया जब रिपोर्ट्स पेश करी गई कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में दैट कैबी लेम खुद का ही ओन्स नो ही हैज नो पर्सनल एसेट्स. एवरी सिंगल थिंग was in his father's name.
1: Very smart. ये सारे के सारे करते हैं आजकल. जरा सा जब डिवोर्स होने वाला होता उससे पहले अपने घर वालों के नाम कर देते कि अब कुछ तरीका ही नहीं है कि कोई चुरा ले. But this has become a very regular thing. You just transfer all assets in somebody else's name. And मेरे पास कुछ है
0: नहीं. And उल्टा बिचारी इसके साथ जो हुआ, इसकी खुद की worth कुछ $10 million की खुद की थी. इसने सोचा था कि इधर से और भी थोड़ा कुछ आ जाएगा. उधर तो हुआ नहीं. In fact, इसने उल्टा और उस पे केस कर दिया कि भाई अब तुम्हारे में से मुझे alimony चाहिए. आधा आधा करो.
1: Smart boy.

0: Mental health is not a destination, but a process. It's about how you drive and not where you are going. Radio Masti 24/7 supports World Mental Health Day.
1: भाई हमारे तीसरे घंटे में हम वही बात करेंगे जो आज हमने सुबह सुबह 7 बजे करी थी। भीगे होंठ तेरे,
2: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
3: दिस इज मस्ती।
4: मैंने कहा था ना, धीरे धीरे मैं अपने रंग में रंग दूंगी, रंग दूंगी।
1: अब्र सा बदन। हाँ, तो अब ऐसा है कि तुमने देखा है जिंदगी में एक नई चीज आई है। नई चीज मतलब कि एक नए किस्म के बाबा जी आए हैं। ही इज कॉल्ड द चुम्बन बाबा। ओके, चुम्बन बाबा, एंड ही इज अंग्रेजी में द लिप किस बाबा। सो ही इज अ सेल्फ स्टाइल्ड साधु जो कि वायरल हो चुके हैं इस समय सोशल मीडिया पर। क्यों? क्योंकि जितने उनकी फीमेल डिवोटीज आती हैं वो उनको लिप्स पर किस करके आशीर्वाद देते हैं बेसिकली। सो होता कुछ ऐसा है, जब मैं वीडियो देख रही थी इसका, बाबा जी बैठे अपनी जगह पे, ठीक है, अच्छा, वो जो औरतें आ रही हैं जो बिल्कुल लीन है उनके उनकी सेवा में, वो आती हैं और फिर जो बाबा जी का साइडी है वो उठा के बाबा जी और उस लड़की, उस औरत के ऊपर चादर डालते हैं, ठीक है, और अंदर बाबा जी जो हैं, जो कि ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के बैठे हैं, डायरेक्ट लिप टू लिप कांटेक्ट करते हैं। क्लोज प्रॉक्सिमिटी रिचुअल्स होती हैं विद द वुमन अंडर दिस क्लॉथ कवर, ठीक है। अभी लोगों ने कहा है ये किस तरह का गुरु मंत्र है, लेकिन बाबा जी का कहना है कि उसके बाद बड़े बड़े लोगों की बीमारियां ठीक हो गई है। व्हाट डू यू थिंक, ऐसी दीक्षा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, बताओ जरा।
4: मैं तो आज बात कर रही हूँ मासूम मर्दों के बारे में। बेचारे अब क्या करें, वो भलाई करने निकले हैं, जन कल्याण उनका वो है, तो बस अब क्या है कि उनका जल कल्याण जो है वो उनके होठों से ही होके निकल रहा है, तो क्या ही कर सकता है वो बेचारा आदमी।
5: कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं,
1: क्या करेंगे इनके बारे में। रेडियो मस्ती 24/7 पर कौन है ये औरतें, कौन है ये भूली औरतें, क्या करेंगे तुम्हारा टर्की कहीं के।
6: Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
1: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxalam India The Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition stanya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mein. Entry is free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxalam India The Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxalamindia.com.

0: आइए आइए, बहुत ही सैटिस्फैक्टरी वाली खबर लाई हूँ मैं, मतलब सुनकर ही बहुत ही मजा आ गया।
1: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग।
2: देखो जापान की औरतें आज हग करके ही रहेंगी। रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है मसी मैडनेस, और मसी मैडनेस में अंठारा आपकी कौन सी खबर है बताओ
0: भाई। एक बहुत ही, ये बहुत पुरानी वाली चीज है लेकिन बहुत ही सैटिस्फैक्टिंग वाली चीज है। होता था ना पहले, बोलते थे बाबा कि अरे एक एक बार आगे पीठ में ना एक बार इधर इधर खुजा देना जरा सा, थोड़ा सा इधर, थोड़ा थोड़ा इधर, नहीं नहीं नहीं इधर इधर इधर इधर, ऐसे करके फिर इन्वेंट हुआ वो वाली लकड़ी का जिसमें ऐसे नाखूनों जैसे वो है, तो वो करके ऐसे करके आपने देखा होगा कि लोग खुजाते होंगे। बट इट्स अ वेरी, जब आपको सही जगह पे खुजली हो जाए तो उसका जो सैटिस्फैक्शन है दैट इज अनबीटेबल।
2: आई कैन नॉट हैंडल दैट, आई कैन नॉट हैंडल समबडी टेलिंग मी यार जरा यहाँ पे खुजली कर देना। मैं सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि भैया जब शरीर बनाया ना भगवान ने तो तुम्हें हर जगह पहुंचने का एक तरीका भी दिया है साथ में। यू कैन टच योर बॉडी एवरीवेयर एंड स्टॉप स्माइलिंग अंतरा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। चलो बताओ तुम्हारी क्या सेटिस्फेक्शन है।
0: हाँ, बंदे ने तो बिजनेस मॉडल ही तैयार कर दिया इसी के ऊपर। भाई ये बंदा 5,000 रुपए पर घंटा लेता है पीठ खुजाने के लिए। 14 लाख की मंथली इनकी जो है इनकम है। एंड चाइना में ही रन्स 2 आउटलेट्स जहां पर इस तरह की बैक स्क्रैचिंग सर्विसेज के लिए लोग बहुत खुशी खुशी आते हैं। अच्छा, उसमें उसके साथ उन्होंने बीच बीच में कहते एड भी सर्विसेज करनी चाहिए, तो वो एक होता है खुजाना।
2: हाँ.
0: एक होता है हल्के हल्के हाथों से ऐसे सर हाथ ऐसे बस फेर देना, मुझे एकदम ऐसे वाली फीलिंग आती है ना, वो एकदम बस वो हम लोग के बंगाली में हम लोग छोटे में इसको बोलते हैं सुसुड़ी।
2: ओके, एंड दैट मींस
0: द द द होल
2: फीलिंग,
0: The feeling, यार सुसुड़ी कर दो सुसुड़ी।
2: माय गॉड, मैं कह रही हूँ ना, आई कैन नॉट इमेजिन, मतलब एक एक गाय भैंस भी पेड़ के पास जाके अपने आप खुजल लेती है, लेकिन इंसान ही है जो दुनिया में लोगों को पैसे देके खुजलवाता है। आई टेल यू, क्या खुजली है यार ये।
0: अपने

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: भाई ऐसा है कि अगली खबर हमारी जो आ रही है यहाँ पर रेडियो मसी 24/7 पर, एक ऐसी खबर है जो आप सुनेंगे और आपको लगेगा ऊपर से नीचे तक रिगल रिगल करता हुआ कौन सा वाला जानवर घूमता है तुम्हारे, अगर तुम उसको पकड़ो तो बताओ बताओ.
2: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी
1: करके जो जाता है ऐसे ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर. बताओ
3: सांप, सांप.
1: हाँ सांप की कहानी सुनाएंगे. अब सांप की कहानी क्या है कि एक मलेशिया का स्नेक चार्मर है, हु इज नोन एज द स्नेक किंग. ओके, स्नेक किंग.
3: ओके,
1: 40 दिन तक वो इंसान 400 कोबरास के साथ में ही स्पेंट अपना टाइम इन अ स्मॉल रूम. ओके, 12 आवर्स अ डे. और वो बंदा तो ये सोच, ही ऑल्सो स्पेंड 21 डेज विद 6,000 स्कॉर्पियंस और उसके बाद वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया. 25 साल के करियर में उसने सर्वाइव करे 99 स्नेक बाइट्स और फिर एट द एज ऑफ 48 वो मर गया जब उसको एक किंग कोबरा ने, एक लाइव शो केएल में चल रहा था और वहां पर बाइट किया और 3 दिन के बाद वो आदमी मर गया. अब उसके बाद में उसका जो बेटा अमजद खान वो अब फैमिली का ट्रेडिशनल स्नेक हैंडलिंग आगे कर रहा है. मतलब क्या है ये,
3: सवाल कमाल ये कि क्यों क्यों करना है ऐसा,
1: करना शौक है, अलग अलग प्रोफेशन है लाइफ के, अब खुजलना भी एक प्रोफेशन तुमने बताया ही था ना, क्यों करना है ऐसा.
3: हाँ बट खुजली और सांप.
1: हाँ मतलब
3: आई मीन
1: खुजली तो है ना सांप के साथ रहने की भी तो खुजली है और क्या है. रेडियो मस्ती 24/7 पर बढ़ते हैं आगे, मिलते हैं आपको एक और खबर के साथ में जस्ट अ लिटिल.
3: मैं तो बुरा मान, मैं मेरे को तो बुरा लग गया खुजली के सेटिस्फेक्शन को सांप के साथ इन्होंने कंपेयर करना.
1: ये बड़ी सेंसिटिव है कुछ टॉपिक्स के बारे में.

0: मुंह से वाली फार्ट पता नहीं क्या ही क्या क्या स्मेल करती होगी.
1: ओके
0: सो बट एनीवेज ये आयुर्वेदिक फार्ट की स्मेल पता नहीं कैसी आएगी. वही मैं सोच रही थी भाई समोसा इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग. ठीक है एक तो जब ये लोग समोसे के साथ पहले ही बीच में जब ये पनीर बीच में डाल दिया फिर मटर डाल दिया ये कर दिया उसी में मेरे को इतना लगे कि समोसे को समोसा रहने दो यार क्या क्या टेंशन है.
2: आई एग्री
0: बट अब आई दे दिस दिल्ली गाय लक्ष्मी नगर में इनकी दुकान है बाय द वे आयुर्वेदिक समोसा ये लेकर आए हैं.
2: ओके
0: ठीक है इसके अंदर का जो फिलिंग है तो वो काफी सारा ऐसा इंग्रेडिएंट है आयुर्वेद का जिससे आपके इंडाइजेशन एंड एसिडिटी की प्रॉब्लम है जो आप खाएंगे इसको तो सॉल्व हो जाएंगी. तो मतलब आपका समोसा खाना इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील व्हिच वाज एनीवेज नॉट.
2: नहीं नहीं समोसा खा के वैसे भी आपका इंडाइजेशन वगैरह का सब ठीक हो जाता है आपका पूरा पेट साफ हो जाता है अच्छे से मतलब
0: एक बार में.
2: तो समटाइम्स एक्चुअली कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं कहती हूँ कि यार आई थिंक बहुत दिन हो गए ये खाया नहीं है या तो ये जाके खा लो या फिर डलकोलेक्स खा लो जो कि
0: टोटली अगेंस्ट ऑफ एयर फ्राइड समोसा एज वेल
2: है ना.
0: लाइक रिसेंटली समबडी सर्व्ड मी दैट आई सेड ये तौहीन है समोसे की जब तक समोसा पूरे तेल में डूब के फ्राई होके ना निकले.
2: यहाँ मैं चुप ही रहूंगी तो अच्छा है क्योंकि मैं तो एयर फ्राइड समोसा ही खाती हूँ. गुड मॉर्निंग एवरीबडी. इससे पहले कि मुझे यहाँ पर कमेंट मिले मैं जा रही हूँ ऑफ ऑफ माइक हम लड़ाई करेंगे इसके बारे में.

0: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी,
1: क्यों सोचते ही आया ना याद वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
2: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानी रॉयल मिठाई एंड नमकीन। अर्ली बर्ड प्राइसेस फ्रॉम $72 प्लस ऑनवर्ड्स अंटिल 11th अक्टूबर। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 6235-8840 और लॉग ऑन टू shahimaharani.com।
3: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
4: It's a Masti Partner event.

0: भाई पर्सनली स्पीकिंग मुझे आज का शो बहुत बहुत बहुत मजा आया क्योंकि हर तरह की खबर है आज हमारे पास. आज हमने डाइवोर्सेस की बात कर ली, आज हमने सांपों की बात कर ली, हमने आज समोसों की बात कर ली, आज हमने हर तरह की ऐसी बात करी है जो कि मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली हमारा ऑनकोर शो सुनना ही चाहिए.
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो
2: बिल्कुल, जो कि शनिवार शाम को 5 बजे से शुरू होता है
0: जी.
2: जस्टिन के
0: और अभी तक अगर आप सैटरडे ही सुन रहे थे तो आप बोलेंगे हैं अच्छा तो अभी तक आप ऑन कोर ही सुन रहे थे. हा हा ऑन रेडियो मजी 24/7 गाइस, टाइम फॉर अस टू गेट इनटू आवर वीकेंड. एंड ऑफ कोर्स अंतरा तो जस्ट कैन नॉट वेट, वो तो मतलब पता है ऑलरेडी अपने बैग बुक पहन के ना बैठी होती है कि बस इसके बाद
2: एक पाव बाहर रहता है. हाँ, स्टूडियो के बाहर एक पाव ऐसे ऐसे करके बात कर रही होती हूँ मैं.
0: और सबसे अजीब बात ये होती है कि द मोमेंट वी आर अबाउट टू फिनिश शी सेज अच्छा मैं कॉल करती हूँ ना, कॉल पे बात कर लेते हैं अगर कुछ है, ताकि कमाल हो जाए अगर ये रुक जाए और बोले कि भैया मैं काम खत्म करके चली जाती हूँ. ना ना, आज इसे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती. जा रही हो?
2: फ्राइडे है भाई.
0: मैंने सोचा था 1 घंटा रुक जाते तो समर जी से मिलके चले जाते आज.
2: नहीं, समर जी को अपना काम करना दो, ही नीड्स हिज स्पेस, आई रिस्पेक्ट हिज स्पेस.
0: नाना पाटेकर का शो करेगा वो आज की नहीं?
2: यही भाई, समर जी के क्वेश्चन ना उनसे पूछा करो. हैं, मैं तो बोलना चाहती हूँ.
0: अरे जब बोला ना उसको कि नाना पाटेकर जी का शो कर दे, कहाँ से गाने लाऊंगा मैं, क्या करूंगा मैं. मैंने कहा चल ये देख ले तू अगर तेको लगता है तो. उसने मेरे को ऐसे घूर के देखा ना. On Radio Masti 24/7 guys, with all due respect to the departed soul, हम आगे बढ़ते हैं और आपको आपके वीकेंड की शुभकामनाएं देते हैं. चले यहाँ से अंतरा, बाय बाय.
2: जी जी बिल्कुल.

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेली है।
2: जोश में रहो।
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.
2: कोकलाची पाकी जुमेरात आई है, जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है। कोकलाची पाकी जुमेरात आई है, जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है। कोकलाची पाकी जुमेरात आई है, जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत।

नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है।

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Musti 24/7 Live. Have a musti bhara weekend.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड, मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.
2: रात अकेली है तो क्या हम तो आपके

0: अपना पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: रात अकेली है
3: तो क्या, हम तो आपके

0: जादू है नशा है
1: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
2: रात

यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊँ, खुद से

जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आग तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है।

0: बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है।
1: What is your behavior of choice this evening? Do I sound a little cheesy?

ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट
3: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan. It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 Live. Have a masti bhara weekend.

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड। मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.